0: ये है दो गुलाब
1: एक डोर में।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: सोमवार की सुबह हो चुकी है 14 तारीख की सितंबर महीना और राम का नाम लेते हुए आइए श्री गणेश करती है
4: एमपीसीच्यावती ने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा
5: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी गणपति बाप्पा मोरिया

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:08 हो रहे हैं. देवा हो देवा गणपति बाप्पा मोरिया. सो गणेश चतुर्थी की आप सबको मंगल कामनाएं और स्वीकार करें नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम सभी को. और बप्पा का नाम ले लिया सुबह सुबह तो जो भी होगा अच्छा होगा. अच्छी सोच के साथ, अच्छी बोली के साथ, एक बिग स्माइल के साथ लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. प्रणाम सभी को. रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है. और मंडे 14th of September ऑलरेडी, तो बस ये दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हैं. और सभी भक्तों को बस बप्पा का आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो, यही कामना करते हैं. सो वट एवर यू माइंड बी, आपके मैसेजेस 9792 आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप वेटिंग फॉर यू, आपके ग्रीटिंग्स, जो भी कहना चाहते हैं दिल से कहें. और बस ये दिन आपके लिए शुभ हो वंस अगेन. और आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती जाए.
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जितने भी हम सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, सबको हमारी तरफ से बॉन कुराज। चलिए सहकात नव नव दोस्त नवकात पर आपके मैसेजेस का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम चुगालाल परिवार गुडलैंड से। कैसे प्यारी सी ज्योति फ्रॉम शातु बिनागा साजू जलाशनी, रेखा सुरेखा माधव परिवार और गणेश चतुर्थी की सबको मंगल कामनाएं। धन्यवाद आपको। गुड मॉर्निंग एंड आप है कौन? यस, मोहोश बुबासे से मिस्टर गाय। तो एज यूजुअल शुभकामनाएं आपको पूरे परिवार के नाम। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम, कैसे हैं आप मिस्टर दीपक? आपको भी शुभकामनाएं पूरे परिवार के नाम। गुड मॉर्निंग गणपति पापा मोरेया। आप है प्रेमिला जी प्लैंदी पापा से, पति के नाम है रंजीत और सभी परिवार के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी शीला जी लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से, शुभकामनाएं आपको। आपके लिए है अब्दुल सारा बानू एंड कैसे नहीं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं और सबके लिए आप प्यार अमन और शांति देश के लिए भी। क्या बात है सरोज जी, राजन मोनिका उमेश पूनम उर्वशी वैश विशा साथ में है, वंदना विमला और जितने भी लोग रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको शुभकामनाएं भेज रही हैं।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आपके तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं 5:26 बो को आज टू वो दोस्त जो घर से निकल चुके हैं काम पर जा रहे हैं, तो बस आपका दिन शुभ हो। प्रणाम आपको भाई सूरज शर्मा सजादा गण गणपति नमः त्रियोले से पूरे परिवार के नाम गणपति बप्पा मोरे आपको साथ नाम मुकेश पूरे परिवार लालमाची से।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musties.
2: हर पल जीने का है. देखो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं. बस हर पल को अगर आप प्यार से जिएंगे, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ जिएंगे तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा. 5:34 5:49 पर आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मीला राम डिकल मोताब लॉन्च से कैसे हैं माय डियर पूरे परिवार के नाम.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी आज यूजुअल आपसे शुरुआत करते हैं.
2: एरीज मेष राशि.
1: वेल आज आपका ध्यान परिवार और घरेलू मामलों पर अधिक रहेगा. मंगल का प्रभाव आपको जबरदस्त ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास देगा, लेकिन इसी वजह से जल्दबाजी या गुस्सा भी बढ़ सकता है. ओहो, तो सोच समझ कर आप अपने जो व्यावहारिक जो है आप बनाए रखें. लव लाइफ में पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा, हालांकि जरूरत से ज्यादा भावनात्मक अपेक्षाएं रिश्ते में तनाव भी ला सकती है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और आर्थिक स्थिति भी स्थिर रहेगी.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज यात्रा, व्यक्तिगत प्रयास और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के मामले में दिन काफी अच्छा रहेगा. और आपके लिए कहा जाता है कि प्रेम संबंधों में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है और आय बढ़ाने या फिर निवेश को बेहतर योजना आप उसको बना सकते हैं, हालांकि दिखावे पर खर्च करने से आपको बचना होगा.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपका ध्यान धन, बचत और परिवार की जिम्मेदारियों पर रहेगी. आपकी आकर्षक बातचीत और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. हालांकि मानसिक दबाव या उलझन के कारण पैसों और दोस्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से फैसला बिल्कुल ना लें. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप

0: खर्च करना करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, है ना। करियर में आपकी रचनात्मकता मानी की क्रिएटिविटी और संपर्कों का लाभ मिलेगा।
1: कैंसर कर्क राशि।

0: और भविष्य के लिए बेहतर निवेश अवसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भावनाओं में आकर खर्च बिल्कुल ना करें। लव लाइफ में पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, दैट्स व्हाई रिश्ते में पारदर्शिता और धैर्य बनाए रखें।
1: लियो सिंह राशि।
0: राइट, आज आत्मचिंतन और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण मानसिक थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है। करियर के मामले में आपकी व्यावहारिक सोच आपको आगे बढ़ाएगी और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने का आपको साहस भी मिलेगा। दोस्तों और सामाजिक संपर्कों से आपके सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को बार बार उठाने से बचे प्लीज। विश्वास और शांति रिश्ते को मजबूत करेंगे, है ना?
1: वर्गो कन्या राशि।
0: दोस्तों, सहकर्मियों और सामाजिक संपर्कों से आपको महत्वपूर्ण जो है लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, फैसले लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी। साझा जिम्मेदारियों या फिर पैसों से जुड़ा कोई भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम ले। लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन बातचीत में जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक रवैया बिल्कुल ना अपनाएं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, फिर भी भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची से बचे।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज करियर, जिम्मेदारियों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और लाभ भावनात्मक संतुलन आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा भी मिल सकती है। क्या बात है, अनुभवी लोगों का सहयोग और आपकी रचनात्मक सोच आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश या कोई योजना भी बन सकती है, लेकिन दिखावे पर खर्च करने से बचें।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज भाग्य आपका साथ देगा और आर्थिक या फिर आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि भी बढ़ सकती है। रिश्तों में ईमानदार बातचीत से आपसे समझ और गहरी होगी। हालांकि काम का बोझ और दैनिक जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। करियर से जुड़े किसी फैसले को लेकर भ्रम में स्थिति बने तो प्लीज जल्दबाजी ना करें। हाँ, और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। निवेश या साझे वित्तीय मामलों से भी आपको लाभ मिल सकता है, फिर भी जोखिम भरे निवेश से प्लीज दूर रहे।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: अच्छा जी, आज मन में छिपी चिंताएं या असुरक्षा की भावना उभर सकती है, ओहो, इसलिए खुद को बेवजह परेशान करने से बचें। आपके लिए कहा जाता है कि आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा आपके लिए है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। काम और हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। लव लाइफ में रिश्ते की गहराई महसूस होगी और पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है, लेकिन शक या जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। वैसे आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: तो आपके लिए ये कहा जाता है कैप्रिकॉर्न कि आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा। विवाहित लोगों के जीवन साथी, उनका भावनात्मक सहयोग मिलेगा और साथ मिलकर जो घर परिवार की योजनाएं बनाई जा सकती है। आत्मविश्वास और व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। कामकाज में प्रगति के अवसर मिलेंगे। हालांकि आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण मानसिक थकान भी हो सकती है। घरेलू मामलों में किसी बात को लेकर तनाव या बहस संभव है, दैट्स व्हाई जिद आप उसको बच के रहें, उससे बच के रहें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज काम, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आपके दिन का मुख्य हिस्सा रहेंगी। काम का दबाव रहेगा और कभी कभी भ्रम या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन आप परिस्थितियों को व्यवस्थित तरीके से संभालने में सफल भी होंगे। बातचीत में आत्मविश्वास रहेगा, मगर शब्दों में तीखापन न आने दे। That's why बोलने से पहले सोचेगा हजार बार, ताकि आपके सामने जो है उनको चोट ना पहुंचे, मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, इमोशनली एज वेल।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली घर और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती

0: सकती है। प्रेम जीवन में माहौल खुशनुमा रहेगा, पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घरेलू जरूरतों के लिए बचत के अनुसार खर्च करना जरूरी है। थकान या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और पानी डेफिनेटली ले। करियर में व्यवस्था और रहेगी और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। जस्ट स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू गुड, बी गुड और आपका दिन अच्छा रहे। स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: किशोर कुमार की आवाज को आप एंजॉय करते रहे, सुनते रहे और ये गाना हमें ले जाएगा 6 बजे के समाचारों की ओर।

से लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, बाबू से धनेश्वर जी, पत्नी सुनीता, रेखा, संजीव, निशोदा विदुष परिवार के नाम, और गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं आपको भी, या बगन परिवार और तपसी परिवार, बिमल, और ये है सुया बिहारी कुंगुमा से, गुड मॉर्निंग आपको भी, जीतन एंड फैमिली, और आप है ललिता फ्रॉम नावोचिया, साथ में मिस्टर टोनी फ्रॉम होशबुआ, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे पूजा, नमस्कार आपको.
5: नमस्कार नीतुषा, सभी को मेरा नमस्कार. आज गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मॉरिशस में विधि विधान के साथ गणपति बापा की मूर्ति स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही शुरू पूजा पाठ, आरती और भक्ति का सिलसिला पूरी रात श्रद्धालु बापा की आराधना में लीन रहेंगे. पूजा और आरती के साथ पारंपरिक झांकरी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा. भक्तिमय माहौल में गणपति बापा की जयकारों से वातावरण गूंज उठेगा.

मराठी समुदाय के लिए गणेश चतुर्थी केवल मात्र एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि परंपरा संस्कृति और सामुदायिक एकता से जुड़ा एक खास अवसर है। कल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणपति बापा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त बापा को भावभीनी विदाई देते हुए उनसे अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करेंगे। आज है हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। मॉरिशस में भी हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ हिंदी भाषा साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदी ने समय के साथ खुद को बदला है। आज ये रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। मामी खावातुमांग से जुड़े मामले ने एक नया मोड़ लिया है। एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद जिसे भ्रष्टाचार और प्रभाव के कथित गंभीर आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पर विस्तार 6:30 बजे की बुलेटिन में और प्रवीण जगनाथ से आज सुबह सीसीआईडी में पूछताछ के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पूछताछ मिसिय मुस्तास नाम से चर्चित फोन टैपिंग कांड की जांच के सिलसिले में होगी। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला उस समय हुआ जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद ये घटना हुई। और मौसम का हाल, दक्षिण की ओर से ठंड हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा और शाम को भी। रात को बादल कुछ घिर आएंगे और देश के दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटू पर हल्की वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 21 से 23, साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:07 पर और सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा। मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरी.

0: आज और कल हमेशा सुबह हो शाम हो हर समय ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहे, गणपति बापा का आशीर्वाद सब पर रहे। एक बार फिर मंगल कामनाएं आप सभी को गणेश चतुर्थी की। तो 6:12 विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम नमस्कार। नीतू आपके साथ, इट्स योर राइज एंड शाइन। एंड जितने भी लोग ऑलरेडी काम पर निकल चुके हैं, बस आप सभी को बो कुराज, बच्चे लोगों को भी बो कुराज, बेस्ट ऑफ लक। और अच्छी सोच के साथ हमेशा कहते हैं जस्ट बी पॉजिटिव, ड्राइव कर रही है, रास्ते पर है, ड्राइव केयरफुली।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

बस इस मोहब्बत को बरकरार रखते हुए विश करती हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. आप है कौन यहाँ पर? वेल कथबोन से है हेमा. कहते हैं कि आज स्थापन है घर पर, तो गणगणपति नमः. हार्दिक शुभकामनाएं आपको, पूरे परिवार, राहु जी, कंदू, तुकाराम एंड टू आरएम टू टीम एज वेल. गणपति बप्पा मोरे आपको माई डियर. नेक्स्ट गाना गुजारती हूँ. यहाँ पर रितेश देवी फैमिली है मिलान इटली से, राजन एंड रविश के लिए आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं. और खुशी है कालू फ्रॉम मेल मामजल जान गुडलैंड. आज आपका बर्थडे है, सो ब्लेसिंग्स टू यू माय डियर फ्रॉम खो मामा बिंदिया, घो पापा सोना, सानी, स्वयं और कालू परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. अरे बाप रे बाप, इतने सारे मैसेजेस. 12th बर्थडे टू ट्विंस कियांश एंड कियारा, राम सामी ऑफ रेन एंड आयलैंड, प्रणव प्रथा, रविश, प्रिशा, लवशा एंड डियर वंस की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार. लीना भिकारी ऑफ हैमलेट रोड मोसेलमों से तौंद्रे, बेस्ट विशेस टू यू माई डियर, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पति शर्वानंद, आंती शर्वेना, रेशमा, रीता, सुदेश एंड भिकारी परिवार. चलिए गणपति बप्पा मोरिया और सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं.

0: सभी को मेरा नमस्कार समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापना की जाएगी भक्त पूरी रात भक्ति में लीन और पूजा आरती के साथ पारंपरिक झांकरी नृत्य रात जागरण कर श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा भक्त ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच बाप्पा को विदाई देंगे हिंदी सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है ये दिन हिंदी भाषा के महत्व उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है भारत से लेकर मॉरिशस और दुनिया के कई देशों तक हिंदी ने अपनी जड़ों को संभालते हुए बदलते समय के साथ खुद को नई पहचान दी है आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष तीन बड़े मामलों की सुनवाई शुरू इनमें रिवॉर्ड मनी इको डियर पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद हुआ टापू के उत्तर में रहने वाले व्यक्ति ने हाल ही में अपनी छत पर एक गिलहरी को केला खाते हुए देखा इस जानवर का वीडियो भी बनाया गया और मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने पुष्टि की है कि ये वास्तव में एक गिलहरी ही है दुनिया के कई देशों में गिलहरी की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं खासकर उत्तरी अमेरिका यूरोप अफ्रीका और एशिया में कुछ गिलहरियां जंगलों में रहती हैं जबकि कुछ पार्कों और यहां तक कि शहरों में भी पाई जाती हैं गिलहरियां मुख्य रूप से फल मेवे अनाज और फूल खाती हैं कुछ प्रजातियां कीड़े मकोड़े अंडे या छोटे जानवरों को भी खाती हैं लेकिन मॉरिशस में ये जानवर अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि अगर ये कोई अकेला मामला नहीं है और कई गिलहरियां यहाँ प्रजनन करना शुरू कर देती हैं तो वे कुछ स्थानीय प्रजातियों के साथ भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं खासतौर पर वे ऐसे फलों का सेवन कर सकती हैं जो स्थानीय पक्षियों के लिए भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से विकास ततया को सुनते हैं उनसे बात की आद्रिया वालिया ने विवरण रचनी भी करका
1: Certains écureuils ayant certaines maladies qu'ils ont portées. Donc, il y a aussi un problème de santé envers d'autres animaux, mais aussi santé publique aussi.
2: कुछ ऐसे गिलहरी हैं जिनके भीतर कुछ बीमारियां पाई जाती हैं अतः वे मनुष्य और अन्य जानवरों के लिए भी एक खतरा बन सकता है अब हमारी क्वारंटाइन प्रक्रिया की विफलता को दर्शाती है कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जानवर पेट ट्रेड के माध्यम से आया है क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी या फिर दूसरे देशों से आयात किए गए माल या पदार्थों के साथ गलती से गिलहरी आ गई इसीलिए हम नेशनल इन्वेजिव स्पीशीज स्ट्रेटजीज को लागू करने की मांग करते हैं क्योंकि ये अभी तक अंतिम रूप और तैयारी में है परंतु इसे जल्द से जल्द अपना दिया जाना चाहिए इस रिपोर्ट से जुड़े सभी सिफारिशों को जल्द से जल्द सुपुर्द कर देनी चाहिए ताकि मॉरिशस में इस प्रकार के जानवर यहाँ तक कि विदेशी पौधा न लाए जाएं क्योंकि इस प्रकार के विदेशी प्राणी हमारे स्थानीय एंडेमिक जीव प्राणियों पर असर कर सकेगा
0: आज गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मॉरिशस में विधि विधान के साथ गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापना की जाएगी पूरी रात श्रद्धालु बाप्पा की आराधना में लीन रहेंगे पूजा और आरती के साथ पारंपरिक झांकरी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा भक्तिमय वातावरण में गणपति बाप्पा के जयकारों से वातावरण गूंज उठेगा मराठी समुदाय के लिए गणेश चतुर्थी मात्र एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि परंपरा संस्कृति और सामुदायिक एकता से जुड़ा एक विशेष अवसर है कल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त बाप्पा को भावभीनी विदाई देते हुए उनसे अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करेंगे। अभी उदय की विशेष रिपोर्ट।

गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर यानी कि आज का दिन अत्यंत उत्साह, श्रद्धा और उल्लास से परिपूर्ण है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही गणेश भगवान के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो गई हैं और वेद मंत्र

अक्षरों के उच्चारण के बीच विधि विधान के साथ गणेश मूर्ति की स्थापना की जा रही है। बप्पा के इस अलौकिक आगमन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज गूंजने लगी।

संध्या के समय मंदिर और पंडालों में भी विशेष रूप से आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु भाव विभोर होकर भगवान गणेश की आराधना करते हैं। इस दौरान बप्पा को उनके अति प्रिय मोदक और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है, जिनसे उत्सव की मिठास और बढ़ जाती है। इस पावन अवसर पर महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति की झलक विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां परोसे गए विशेष पारंपरिक मराठी भोजन पूरण पोली और ओरा सभी का मन मोह लेता है। आज रात पारंपरिक मराठी वेशभूषा यानी कि काष्टी में सजे भक्तगण उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य झाकरी उत्सव में चार चांद लगा देंगे। ढोल ताशों की थाप और पारंपरिक धुनों पर थिरकते कलाकारों की ऊर्जा से हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस प्रकार आस्था संस्कृति और उल्लास का यह संगम गणेश स्थापना के इस पर्व को सभी के हृदय में अमर कर देंगे। आज घरों मंदिरों एवं पंडालों पर गणपति पापा मोरिया की गूंज गूंजने लगेंगे। समाचार विभाग की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामना।

आज है हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। मॉरिशस में भी हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ हिंदी भाषा साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदी ने समय के साथ खुद को बदला है। आज ये रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि अपनी भाषा का सम्मान करना, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान का सम्मान करना है। हिंदी है तो एहसास है, हिंदी है तो पहचान है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार देख कर शुभकामनाएँ। अभी उदय की रिपोर्ट।

प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह एक उत्सव ही नहीं है अपितु हमारी सांस्कृतिक चेतना, अस्मिता और प्राणवायु का महोत्सव है। हिंदी भाषा विज्ञान की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली एक अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है, जिसकी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि उच्चारण के पूर्णतः अनुरूप है, यानी कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है।

वैश्विक पटल पर आज हिंदी अपनी मिठास, सुगमता और व्यापकता के कारण विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में शुमार है, और जहां लगभग 60 करोड़ लोग इसे बोलते व समझते हैं। व्यापार और डिजिटल मंडी के इस युग में

0: हिंदी का आर्थिक आयाम भी तेजी से उभरा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उपभोक्ता मंडी अब हिंदी को अपनी समृद्धि का माध्यम मान रही है। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड ने भी तो वैश्विक सीमाएं लांघकर हिंदी को सुदूर और दूर दराज देशों तक पहुंचाया है, जहां विदेशी नागरिक भी हिंदी गीतों एवं संवादों से मंत्रमुग्ध हैं। प्रवासी भारतीयों ने मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम जैसे देशों में इसे अपनी अमूल्य धाती के रूप में जीवित रखा है। विशेष रूप से मॉरिशस की धरती पर हिंदी का स्थान अत्यंत ही गौरवशाली है, जहां यह हमारे पूर्वजों के संघर्ष और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। मॉरिशस में हिंदी भाषा के पठन पाठन, धार्मिक अनुष्ठानों, विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी स्पीकिंग यूनियन, हिंदी प्रचारिणी सभा और बैठकें इस बात का प्रमाण है कि यह भाषा भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सांस्कृतिक सेतु है। इसी कड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक मंचों पर लगातार हिंदी में संबोधन देकर इस भाषा को कूटनीति एवं वैश्विक संवाद का सशक्त माध्यम बना रही है। अतः हिंदी वह सामर्थ्यवान भाषा है जो संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में पिरोकर एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। सभी हिंदी प्रेमियों को समाचार विभाग की ओर से हिंदी दिवस की मंगल कामना।
1: मामी गावातुमांग से जुड़े मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद जिसे भ्रष्टाचार और प्रभाव के कथित गंभीर आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है। शुक्रवार शाम घोंबा में एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने दो लोगों के बीच हुई एक कथित बातचीत जारी की, जिन्हें कॉल और डेविड के रूप में पेश किया गया है। इस बातचीत में 300 मिलियन और 500 मिलियन रुपए की रकम का जिक्र किया गया है, लेकिन फिलहाल इस रिकॉर्डिंग की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। और सभा से एक दिन पहले नासेर बिकी ने एफसीसी के एक शपथ पत्र और एक यूएसबी ड्राइव सौंपी थी, जिसमें एक ऑडियो विजुअल मौजूद है। उन्होंने जांचकर्ताओं से इसकी जांच करने का अनुरोध किया है। हालांकि उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि उनके पास इस बात का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से किसी अवैध भुगतान का अनुरोध किया था या उसे मंजूरी दी थी। अब ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन गया है कि क्या ये रिकॉर्डिंग असली है, क्या इसमें कोई बदलाव किया गया है या फिर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया हो सकता है। आधुनिक वालिया को सुनते हैं।
0: आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सचमुच बहुत यथार्थवादी सिंथेटिक आवाजें बनाना संभव बनाती है। किसी व्यक्ति की पर्याप्त रिकॉर्डिंग के साथ कुछ उपकरण उसकी आवाज, लहजे, लय और यहाँ तक कि कुछ खास उतार चढ़ाव यानी कि इंटोनेशंस की भी नकल कर सकते हैं। और मॉरिशस की क्रियोल भाषा खुद में कोई सुरक्षा कवच नहीं है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडियो उदाहरणों के आधार पर किसी भाषा या लहजे की नकल करना सीख सकती है। छवियों और वीडियो के साथ भी यही बात लागू होती है। डीप फेक तकनीक चेहरे को बदल सकती है, नई आवाज के साथ होठों को सिंक कर सकती है या ऐसे दृश्य बना सकती है जो बेहद वास्तविक लगते हैं। और यह समस्या मॉरिशस से काफी आगे तक फैली हुई है, यहां तक कि अमेरिका में भी। अदालतें अभी भी इस बात पर काम कर रही हैं कि इस तरह के सबूतों से कैसे निपटाया जाए। अमेरिकी न्यायिक अधिकारी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वीडियो, छवियों और ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसका मतलब ये है कि अदालत में केवल ये कह देने वाला एक साधारण सॉफ्टवेयर कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, हमेशा पर्याप्त नहीं होता।
1: तो अभी आप आद्रियन वाले की रिपोर्ट पर अभी उदय को सुन रहे थे। उधर प्रवीण जगनाथ से आज सुबह सीसीआईडी में पूछताछ

के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पूछताछ मिसिय मुस्ताक नाम से चर्चित फोन टैपिंग कांड की जांच के सिलसिले में होगी। उनके लिए एक नई तारीख तय की गई है, जबकि वो इससे पहले 1 सितंबर को CCID पहुंचे थे। उनके वकील मेगाउफ गुलबुल और आइवान कोलेंडाविलू ने पूछताछ को स्थगित करने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें समन जारी किए जाने के समय इस

0: में थे जो काउंटर टेररिज्म यूनिट में उनके कार्यालय में रखे गए एक उपकरण से संबंधित था। रिवॉर्ड मनी जांच में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पूछताछ के दौरान कहा था कि उन्हें वो कोड याद नहीं था। लेराम डील ने बताया था कि हालांकि वो उपकरण उनके कार्यालय में मौजूद था लेकिन वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं करता था। उनके अनुसार पुलिस की एक अन्य इकाई नेशनल सिक्योरिटी सर्विस उस उपकरण का इस्तेमाल करती थी। आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष तीन बड़े मामलों की सुनवाई शुरू हो रही है। इनमें रिवॉर्ड मनी, इको डियर पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है। डीपीपी ने पिछले 11 अगस्त को संबंधित लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोप दाखिल किए थे। इन तीनों मामलों को जज लक्ष्मी प्रसाद उजायब के समक्ष पेश किया जाएगा। लुविना सूफी की रिपोर्ट पर विवरण अभी उदय का।
1: पहले मामले में पुलिस के पूर्व सहायक आयुक्त लील राम दियाल पर अपने पद का दुरुपयोग करके लाभ उठाने और मनी लॉन्डरिंग के आरोप हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच मुख्य रूप से 4.5 मिलियन रुपए की उस रिवॉर्ड मनी से जुड़ी हुई है जो पुलिस मुखबिरों को देने के लिए थी। ये राशि उनकी पत्नी के साथ एक संयुक्त खाते में जमा की गई थी। पूर्व उच्च अधिकारी और उनकी पत्नी की तीन संपत्तियों के साथ साथ टोयोटा गावकाता को जब्त करने का आदेश दिया गया है। याद दिला दें कि रिवॉर्ड मनी मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर अनिल कुमार दीप सहित अन्य उच्च अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर अभी भी अस्थायी आरोप लगाया गया। इको डियर पार्क एसोसिएशन मामले में पूर्व मंत्री मनीष गोबिन, पूर्व सांसद गाजाना दालिया और एसआईटी लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हरिदत्त रामनारायण कटघरे में है। ये मामला गांवबासे इलाके में शिकार और मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय से सरकारी जमीन का लीज हासिल करने से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व सीईओ नामा सिवायन पुनुसामी, जिन्हें केन पुनुसामी के नाम से भी जाना जाता है, उन पर ईडीबी की वेबसाइट के डिजाइन और विकास के लिए एक ठेका देने के वैदे फ्रांसिया सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है।
0: विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। यह हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद हुआ। और आपको बता दें कि याहूदीन में हुए इस हमले में ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन के जोनाथन पोवेल समेत यूरोपीय देशों के अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इसी रेलवे मार्ग से एक अलग ट्रेन में यात्रा कर चुके थे। वे कीव में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। रूस ने कहा है कि उसने पश्चिमी यूक्रेन में रेलवे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। हालांकि यूक्रेन की सरकारी रेलवे कंपनी यूक्रेजाली जिनसिया ने कहा कि काफ़ी संभव है कि इस ड्रोन का निशाना राजनयिकों को ले जा रही ट्रेन रही हो। अरब मौसम का हाल, दक्षिण की ओर से ठंड हवाएं बह रही है जो आज रात को हमारे स्थानीय मौसम पर जिसका असर आज रात को हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा और शाम को भी, सिवाय रात को बादल कुछ घिर आएंगे। देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की वर्षा होगी और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें

ठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 अधिकतम 21 से 23 साल इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:07 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा।

देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बापा की मूर्ति स्थापना, भक्त पूरी रात भक्ति में लीन, पारंपरिक झांकरी नृत्य के साथ रात जागरण। कल श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बापा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त ढोल नगारों और जयकारों के बीच बापा को विदाई देंगे। हिंदी सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है। आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष 3 बड़े मामलों और की सुनवाई शुरू हो रही है। इनमें रिवॉर्ड मनी, इको डियर पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद हुआ। 6:53 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। सैकिया मिल बुबासेमे 86 साल की 86 years old श्रीमती सौभाग्यवती रामजियावन। श्रीमती सौभाग्यवती रामजियावन पैदाशी नाम चतू और जिन्हें लोग रानी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान सैकिया मिल बुबासे से उठाकर शिबैल कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। कबीरदास स्ट्रीट रोष्टिया में 68 साल की 68 years old श्रीमती देवंती सुकन। श्रीमती देवंती सुकन पैदाशी नाम गोपाला और जिन्हें लोग देवंती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे राकेश सुकन के मकान कबीरदास स्ट्रीट रोष्टिया से उठाकर डाकुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। श्रीमय मायावरम सुयाक में 100 साल की 100 years old की श्रीमती गोइंदामा रामासामी पैदाशी नाम रंगासामी और जिन्हें लोग अमाई नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी बेटी पुष्पावादी सुब्रमण्यम इनकी बेटी श्रीमती पुष्पावादी सुब्रमण्यम श्रीमय मायावरम सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 10 AM। डिप्लेविट्स रोड लॉन्ग माउंटेन में 88 साल के 88 years old श्री गोविंदत्त दुमन जिन्हें लोग पंडित जयलाल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा में पंडित पुरोहित थे। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे सुभाष दुमन के मकान डिप्रेविट्स रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड बुबासे में ला शापेल ओडोंट इलियनसन रॉयल रोड बुबासे में 78 साल के 78 years old श्री प्रकाश देवी जिन्हें लोग प्रकाश नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे रोजहिल स्थित मैगजीन देवी के मालिक थे। इनकी अर्थी आज दिन

0: के ढाई बजे, आज दिन के ढाई बजे ला शापेल ओडोंट इलियन सेंट रॉयल रोड बोबासे से उठाकर शिबेल किश्मशान भूमि ले जाएगी। आपको बता दें कि प्रकाश देवी नंबर 9 शॉल लीज स्ट्रीट रोज हिल के रहने वाले थे। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटबोन में 84 साल के 84 years old श्री अडुएट रंगदुआ, श्री अडुएट रंगदुआ जिन्हें लोग अडुएट नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे आज दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटबोन से उठाकर त्वामा मेल की श्मशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM। और लीबियातो पंडामनिकम लेन वाक्वा में, लीबियातो पंडामनिकम लेन वाक्वा में विनर्स सुपरमार्केट के पास 75 साल के 75 years old श्री विजय रामा जिन्हें लोग जैसन नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल मंगलवार को दिन के 2 बजे इनकी पत्नी इंदिरा रामा के मकान लीबियातो पंडामनिकम लेन वाक्वा से उठाकर थोमा मेल किश्मशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमारो एट 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
3: एग्जैक्टली 7 AM।
0: चावती ने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: के 7:07 आज है 14 सितंबर सोमवार का दिन। गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सबों का। कैसे हैं आप लोग भाई? मूड तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मंडे में लोग थोड़े लेजी फील करते हैं, लेकिन उस लेजीनेस को दूर करने के लिए हम चले आते हैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ। तो आपका वेलकम, आपका स्वागत है। चलिए भाई, जिनको प्रॉब्लम हो रही है बेड से उठने की, आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप उठोगे नहीं, हमारे इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इनाम कैसे मिलेगा। बहुत सारे गेम्स हैं, गिफ्ट्स के साथ आए हैं और आपके मॉर्निंग को बनाने आए हैं ब्यूटीफुल। सो स्टे कनेक्टेड हमारे साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर। मैं हूं वेदिता और मैं आपके साथ रहूंगी सुबह के 9 बजे तक। हाँ बिल्कुल, 9 बजे तक।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
4: Enzo, mon beau arrange mon la case. Enzo, mon beau faire innovation. Ça joue là, c'est côte métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7-6 prises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promos, côte métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Morning Beat. James.
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी मॉर्निंग मॉर्निंग में आपके लिए गेम भी लेकर आए हैं एंड यहाँ मैं आपको बता दूं जिनको मिलेगा इनाम उनको क्या मिलेगा. सो वी हैव टिकट्स फॉर यू जी. आपको दो एंट्री टिकट्स मिल सकते हैं और ये होगा फॉर सियाग्जावाता. यस, तो ये जो सर्कस आप देखने वाले हैं ये अबागातिल में हो रहा है. Every Thursday and Friday, 6 PM and Saturday and Sunday at 2:30 PM and 5:30 PM. तो चलिए यहाँ पर अगर आप magic thrills, laughter and spectacular circus performances देखना चाहते हैं अपने family के साथ, all you have to do is to answer me. जी हाँ, you have to answer me कि okay, which of these would a juggler be more likely to use. Okay, which of these would a juggler be more likely to use? Juggling balls or football boots? Juggling balls or football boots? आपको मुझे सही जवाब देना है 1549 and 1294 पूरे नाम और पते के साथ.
0: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2
1: Radio

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: All right, तो यहाँ पर आपसे हमने सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था, which of these would a juggler be more likely to use? Juggling balls or football boots? And the right answer is definitely juggling balls. And यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. And हमने कोशिश की यहाँ पर सबका नाम जो है हम लकी ड्रॉ में डालें, और फाइनली लकी ड्रॉ के बाद नाम आता है. गतिका फ्रॉम अवाकवा, कंग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आपको मिल रहा है 2 टिकट टू सियक्सावाता. सो आप एक मैजिक थ्रिल्स लाफ्ट एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ. सो यू कैन कैच सियक्सावाता एट बागातेल. शोज जो होते हैं एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे 6 PM एंड सैटरडे एंड संडे 2:30 PM एंड 5:30 PM. आपके बुकिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल ऑन 5250-9413 एंड सियक्सावाता. डोंट मिस द मैजिकल बिग शो. कंग्रेचुलेशंस टू यू गतिका. आपको मैं बता दूं, आपको MBC आना पड़ेगा अपने ID कार्ड के साथ मंडे टू फ्राइडे यानी कि सुबह 9 बजे से सुबह के 3 बजे के बीच टू कलेक्ट योर टिकट्स. थैंक यू.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Le shampoing antibactérien Royal Pet à 169,95 € et 2,7 kg de Pedigree pour chiot Chicken Egg Milk à 689,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
4: On est tous Winners.
5: Moments that matter with Sikom.
6: जिंदगी बहुत हाली आगे बढ़ेला. हमनी के प्रोजे लॉम्बिशियों आज सपना जो हमनी देखी लाचा उस सब खातिर आज लेवल गल फैसला काल जाके बहुत अंतर करी. तोहर कौये आगे बढ़ता, तोहर लॉम्बिशियों भी बड़ा हुआ था और आप अपन भविष्य के बारे में सोचा था. पर काल जो लम्हा तुहर खातिर मायना रखी उकर खातिर MSC करे के बारे में सोच ले हवा. एगो लाइफ इंश्योरेंस ई खाली तुहर परिवार खातिर सुरक्षा नहीं है, बल्कि ई एगो बचत करे के, अपन पैसा के फलित करे के और भविष्य खातिर आर्थिक रूप से तैयार होए के तरीका है. एगो मकान किने के परियोजना, लैका के पढ़ाई, एगो सुखद रिटायरमेंट या पूरा शांति से तुहर प्रोजेक्ट के साकार करे के छूट. सिकोम के प्रस्तावित जीवन बीमा के संगे आप सब आज ही से जैसन खुशी अपन भविष्य बनाए. काहे कि काल के बेहतर पल तुहर आज के तैयारी पर निर्भर बा. सिकोम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क.

0: संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Sikkim.
2: RM2 Radio Musti.

So, जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. एंड जो लोग चाहते हैं कि भाई किसी को सरप्राइज कर दे किसी के बर्थडे पे, डोंट फॉरगेट, आप लोग 549 and 1294 पे उनका नाम और उनका फोन नंबर हम तक जरूर भेजें. हमें भी बहुत खुशी होगी लोलो हैप्पी पॉकेट की तरफ से उनको कॉल करके उनको वाउचर देने का और उनके लिए हैप्पी बर्थडे गाने का. सो वेटिंग फॉर यू. 549 and 1294 नंबर है, याद रखिएगा.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: चलो भाई, टाइम हो गया है उनको सरप्राइज करने का, जिनका आज बहुत खास दिन है। यस, लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से अभी समय हो गया है कि हम उनको विश करें हैप्पी

0: डे जिनका आज खास दिन है। अब किन को मिलेगा ये वाउचर और कौन यहाँ पर हमसे बात करना चाहेगा? चलिए हम नंबर तो मिला रहे हैं, लेकिन कभी कभी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बात हो जाए, कभी कभी लाइन कट जाती है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर लूडो हाइपर मार्केट की तरफ से हमने पूरी कोशिश की यहाँ पर कॉल करने की, बात करने की, लेकिन लाइन लग नहीं रही है और लकी ड्रॉ में नाम इनका ही आया है। तो वी गोना विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू शुभम, आज उनका बर्थडे है और उनको उनकी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कंग्रेचुलेशन, आपका नाम आया है। सो आपको मिल रहा है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर जो कि आपको कलेक्ट करना पड़ेगा 8 MBC, और उसके लिए अपने आईडी कार्ड के साथ आपको पड़ेगा आना MBC 9 बजे और दोपहर के 3 बजे के बीच। आज नहीं तो कल, आपके पास 2 दिन है, आज नहीं तो कल आप आकर अपना वाउचर प्लीज कलेक्ट कीजिए अपने आईडी कार्ड के साथ।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जिकाल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे संगबा सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सगबा एवेस्टी करे जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइया इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
1: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
2: मॉर्निंग बीट अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो जेम्स
3: RM2 Radio Musti in the mix.
4: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए समय हो गया है, मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद से, जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अब वो वार की बात कर रहे थे, वॉर की बात कर रहे थे, आई डोंट नो, चलिए उनसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। तो यूनाइटेड पर वॉर का वार और विवादास्पद कंट्रोवर्शियल हार, गोल अर्लिंग हालैंड ने स्कोर किया, रेफरी माइकल ओलिवर का फैसला था ऑफसाइड, वार ने फैसला बदला मतलब गोल अलाउड। पर मैच के बाद प्रोफेशनल रेफरी एसोसिएशन ने कहा वार का फैसला गलत था, ऑन फील्ड रिव्यू करना चाहिए था। वार के अनुसार पैट्रिक डोगू का जूता अलोन के आगे था, प्लेड ऑन साइड बाय द बूट, पर इससे पहले मैनचेस्टर सिटी का एंजो फर्नांडेज ऑफ साइड पोजिशन पर था, उसने गेंद को छुआ नहीं।

0: डिफेंडर मार्टिनेज पर असर पड़ा। फिर जाकर आलोन ने स्कोर किया। फुटबॉल नियमों के अनुसार गोल नहीं देना चाहिए था, पर वॉ का वार और यूनाइटेड की हार। मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर डर्बी जीत गया, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में और 10 खिलाड़ियों के साथ। 25वें मिनट पर फोडेन को रेड कार्ड दिखाया गया, पर इसका फायदा नहीं उठा पाया मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस सीजन ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की दूसरी हार है, जबकि मैनचेस्टर सिटी के लिए 4-4 जीत ही जीत। आर्सेनल के साथ 12 अंक, केवल गोल डिफरेंस पर आर्सेनल आगे है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 13वें पोजीशन पे है, 13th पोजीशन, 4 अंकों के साथ। कल के पहले मैच में ब्राइटन के लिए ब्राइट ही ब्राइट, उसने कोवेंट्री सिटी को 5-0 से पछाड़ा। आज लीड्स यूनाइटेड का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से होगा। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में शेफील्ड यूनाइटेड 0 वुल्व्स 1। स्कॉटिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में कल सेल्टिक की हार हुई, उसको हराया ग्लासगो रेंजर्स ने 3-0 से। वेमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 चेल्सी 5। स्पेन के ला लीगा में लेवेंटे 2 बार्सिलोना 4, लामिन यमाल का डबल। सेल्टा विगो 1 मालागा 1, रेताफे 1 डिपोर्टिवो 1, रियल सोसेडा 0 एटलेटिको मैड्रिड 3। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिक 2 एल्वेबर्ग 1, आरबी लाइप्ज़िग 5 हैमबर्ग एसवी 0। इटली के सेरी आ में यूवेंटुस की हार, सासोलो ने उसे 3-2 से हराया। लेचे 3 मोन्जा 2 नापोली 1 बोलोनिया 0। फ्रांस के लीग 1 में लील 2-3-0, ले मान 2 लांस 2, पेरिस सेंट जर्मेन ने एवजा कर ब्रेस्ट को 1-0 से हराया। टेनिस यूएस ओपन का चैंपियन बना अलेक्जेंडर ज़वेरेव, फाइनल में उसने होम फेवरेट शेल्टन को हराया। फ्रेंच ओपन के बाद यूएस ओपन भी जीत पाया ज़वेरेव। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के स्पैनिश ग्रां प्री में किमी अंतोनेली की जीत। लैंडो नोरिस वर्चुअल सेफ्टी कार पीरियड में लीड खो बैठा और अंतोनेली ने इसका फायदा उठाया। अंतोनेली अब चैंपियनशिप में 81 अंक 81 पॉइंट्स अहेड। क्रिकेट विमेन्स एशिया कप भारतीय टीम के नाम, फाइनल में कल भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को 72 रनों से हराया। ये टीम इंडिया का 8वां टाइटल है। लड़कियां चैंपियन तो लड़के भी कम नहीं, टीम इंडिया ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर रहा 82 रनों के साथ। मॉरिशस में भी क्रिकेट, आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा के 4th एडिशन का चैंपियन बना कैंपस अब्रॉड लायंस। फाइनल में कैंपस अब्रॉड लायंस ने कॉन्टिनेंटल चीटास को हराया। मापू के SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में कल धूमधाम के साथ फाइनल खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए कैंपस अब्रॉड ने 123 रनों का टारगेट रखा, पर कॉन्टिनेंटल चीटास केवल 79 रन पर ऑल आउट हो गए। इस साल का आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा खास रहा, क्योंकि मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर बन गया है और ओलंपिक कमेटी का भी सदस्य बन गया है। बॉक्स फ्रांसेज में फ्रांस में लगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मॉरिशस 4 मेडल जीत पाया। एक सिल्वर मेडल ग्रिगोरी टोमासू ने जीता, फिर फ्लोरियन सुब्दुराली, जेसिका नोबर्स, चनिष्ठा जोशी ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। और कल रात ISPL डेमिल की टीम का शानदार स्वागत किया गया। सरजू गौरीशंकर के जवानों ने इतिहास रचा, एवे जाकर क्वालिफिकेशन ले पाए। That's it, the latest from the sports world. वैसे कह रहे हैं कि वॉ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से चुराया। क्या चुराया? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो गोल स्कोर नहीं किया, 10 खिलाड़ियों के साथ मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। हाँ, वॉ का वार देखेंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। दूसरी हार मैनचेस्टर यूनाइटेड को संभलना होगा आगे। हैव अ वंडरफुल डे एंड अ गुड वीक अहेड। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद। होता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे यू टू।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: RM2 Radio Musty.
1: चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं 8 बजे के समाचारों की ओर. यू आर लिस्निंग टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ. ये है आपका मॉर्निंग बीट. मिलते हैं बस थोड़ी देर में.

सबको के नमस्ते भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको के स्वागत करत है जा आज गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या के मौसम में विधि विधान संगे गणपति बापा के मूर्ति स्थापना होई पूरा रात श्रद्धालु बापा के आराधना में लीन होयन स पूजा आरती संगे पारंपरिक झाकरी नृत्य भी आकर्षण के केंद्र में रही भक्तिमय वातावरण में गणपति बापा के जयकार से वातावरण गूंज उठी मराठी समुदाय खातिर गणेश चतुर्थी खाली एगो धार्मिक पर्व ही नहीं बकिर परंपरा संस्कृति और सामुदायिक एकता से जुड़ एगो विशेष अवसर है काल पूरा उत्साह और श्रद्धा संगे गणपति बापा के विसर्जन करल जाए भक्त बापा के भावभीनी विदाई दियन जा और बापा के आवत बड़ी सफीनों से आई के पूजा करियन जा आज हिंदी दिवस मनावल जात बा हर बरिस 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनावल जाला हिंदी खाली एगो भाषा ने बकिर हमनी के भावना विचार और संस्कृति के एगो एक दूसरे से जुड़े होला एगो मजबूत करी है भारत खाली भारत में नहीं विश्व के कई अनगो देश में हिंदी बोले और समझे होला लोग मौजूद बातें मॉरिशस में भी हिंदी के अपने गो विशेष स्थान बातें यहाँ हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति शिक्षा और मीडिया के माध्यम से जनता के जीवन से जुड़ल है हिंदी समय संगे खुद के बदल दिले बा आज ई रेडियो टेलीविजन सिनेमा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपन मजबूत मौजूदगी दर्ज कर लेवा हिंदी दिवस हमने के याद दिलावेला कि अपन भाषा के सम्मान करे के अपन संस्कृति और अपन पहचान के सम्मान करे के हिंदी बात एहसास बा हिंदी बात पहचान बा हिंदी दिवस के सबको के हार्दिक शुभकामना बाते मामी खावा तुमांग से जुड़ल मामला एक गो नवा मोर ले लेबा एगो ऐसन रिकॉर्डिंग सामने आइला के बाद जिके भ्रष्टाचार और प्रभाव के कथित गंभीर आरोप से जुड़ल बतावल गलबा सुख के सांझ के घोंबुआ में MSM के नेता प्रवीण जगन्नाथ दू जना के बीच होल एगो कथित बातचीत जारी करलक जिके कल और दैविद के रूप में पेश करल गलबा ई बातचीत में 300 मिलियन और 50 मिलियन रुपया

0: रकम के जिक्र करल गल बा, मगर अभी खातिर ई रिकॉर्डिंग के प्रामाणिकता के पुष्टि नहीं होल बाती। आर प्रवीण जगन्नाथ से आज फजीर के सीसीआईडी में पूछताछ करल जाई। पूछताछ मिसिय मुस्तास नाम से चर्चित फोन टैपिंग कांड के जांच के सिलसिला में हुई। ओकर खातिर 9 तारीख तय करल गल बा, जबकि ऊ एकर से पहले 1 सितंबर के सीसीआईडी आल रहल। आज सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष 3 बड़का मामला की सुनवाई शुरू होता। एकर में रिवॉर्ड मनी इको डियर पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ल मामला शामिल बाते। डीपीपी गल 11 अगस्त के संबंधित जना के खिलाफ औपचारिक आरोप दाखिल कर ले रहल। ई 3 मामला के जज लक्ष्मी प्रसाद उजायब के समक्ष पेश करल जाए। दूसर देश के खबर में यूक्रेन पोलैंड सीमा के भीड़ी एगो ट्रेन के रूसी ड्रोन निशाना बनैले बा। ई हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के ऊ रेलवे मार्ग से गुजरे के कुछ ही समय बाद पेश आल। तैकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त हो। तु लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुबह के 8:08 हुए हैं। चलो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एनर्जी तो मिल गई होगी, थोड़ा सा झूम लिया हो गया, घूमना भी हो गया आपका, तो ऐसा में हम क्या करें। चलिए जी, यहाँ पर गीतों का जो सिलेक्शन है इसको आप पसंद कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ। इफ़ येस प्लीज डू लेट मी नो 5491294 पर। और अभी के लिए क्या करना है हमें, बस ये जानना है कि आज पूरे दिन मौसम कैसा रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं पूजा के साथ।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: On est tous winners.
4: दक्षिण की ओर से ठंड हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा और शाम को भी। रात को बादल कुछ घिर आएंगे और देश के दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर हल्की वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 21 से 23। शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:07 पर और सूर्यास्त 6:04 पर होगा।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. 1.2 kg de Whiskas Gourmet Seafood à 349,95 € et les 100 g de manger pour chat et chaton Alpha Pet à 34,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
6: On est tous
7: Sweeters! MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
8: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MPC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MPC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीज में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीज का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसाई के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही है, पर हर प्रॉब्लम अपने साथ एक लेसन भी लाती है। बस हार मान लेना सॉल्यूशन नहीं होता, थोड़ा रुक, खुद को संभाल और फिर एक स्टेप और आगे बढ़, क्योंकि मुश्किलें तुम्हारी जर्नी का एंड नहीं, तुम्हारी ग्रोथ का प्रूफ है। दोस्तों, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कोई उन प्रॉब्लम्स को अपनी वीकनेस बना लेता है और कोई उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ। हर टफ फेज टेम्परेरी है, लेकिन उस फेज से जो स्ट्रेंथ तुम डेवलप करते हो वो तुम्हारे साथ रह जाती है। प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, पर तुम उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, बस इतना याद रखना कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं और बस थकना नहीं है, आगे बढ़ना है।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire, mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Yes, a very good morning to you guys. Welcome, आपका स्वागत करते हैं आप ही के मॉर्निंग मस्ती में और मॉर्निंग बीट में. ओके, यहाँ पर चलिए जी, खुशी का माहौल कुछ आ गया है एंड आप लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं ये खूबसूरत गाने. चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए गणपति बप्पा मोरे आपको भी. एंड वी हैव अ ब्यूटिफुल मैसेज, कहते हैं नेक्स्ट गाना टू माई भाभी जिनी और उनके ममा, उनके भाई आयुष, अक्षीश, अक्षिका, अनिश्चय, अवीश, अरिश्ना, आकाश, इजीलेन, संजना, करण, प्रिया, उन सब के लिए तो थैंक यू सो मच. और आपके भाभी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आई गेस आपने लिखा तो नहीं है. ओके, मेरे ख्याल से उनका बर्थडे ही है. ऑलराइट, मैं समझ गई, बर्थडे उनका. सो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जिनी. एंड चलिए, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से, फ्रेंड सर्कल में से कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उनको विश करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड मी योर मैसेज ऑन 5491294. चलिए इसी के साथ जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं सभी के नाम यहाँ पर हमारे लिए प्रे करने के लिए. थैंक यू सो मच. यहाँ पर सुया है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम. साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए बिंदिया. थैंक यू, आपको बहुत सारा प्यार है हम सब की तरफ से भी. तो 5491294 नंबर है आपके मैसेज के लिए. आप लोग हमें अपने पैगाम भेज सकते हैं. इवन अगर आपको लग रहा है कि आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है या कम हो गया, या आप आराम से गाड़ी चला रही हैं, आपको नहीं बोल रही हैं, बगल में जो बैठे हैं वो हमें मैसेज तो कर ही सकते हैं. सो वेटिंग, आपका मूड करिए हम 5491294.

0: सुबह के 8:40 हुए हैं। सभी हमारे लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे मॉर्निंग बीट में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जी हाँ, चलिए, यहाँ पे समय हो गया है एक बार फिर, अगर आपने हमारा स्पोर्ट्स अपडेट जो है वो मिस कर दिया अरविंद के साथ, तो एक बार फिर हमें समय मिला है। चलिए एक बार फिर उनको सुनते हैं, जानते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है।
1: स्पोर्ट्स न्यूज, रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: Good morning once again, Arvind.
2: Good morning, aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world.
3: तो यूनाइटेड पर वॉ का वार और विवादास्पद कंट्रोवर्शियल हार, गोल अर्लिंग अलोन ने स्कोर किया। रेफरी माइकल ओलिवर का फैसला था ऑफसाइड, वॉ ने फैसला बदला, मतलब गोल अलाउड। पर मैच के बाद प्रोफेशनल रेफरी एसोसिएशन ने कहा वॉ का फैसला गलत था, ऑन फील्ड रिव्यू करना चाहिए था। वा के अनुसार पैट्रिक डोगू का जूता अलोन के आगे था, प्लेड ऑन साइड बाय द बूट, पर इससे पहले मैनचेस्टर सिटी का एंजो फर्नांडेस ऑफ साइड पोजीशन पर था। उसने गेंद को छुआ नहीं, पर डिफेंडर मार्टिनेज पर असर पड़ा, फिर जाकर अलोन ने स्कोर किया। फुटबॉल नियमों के अनुसार गोल नहीं देना चाहिए था, पर वॉ का वार और यूनाइटेड की हार। मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर डर्बी जीत गया, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में और 10 खिलाड़ियों के साथ। 25वें मिनट पर फोडेन को रेड कार्ड दिखाया गया, पर इसका फायदा नहीं उठा पाया मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस सीजन ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की दूसरी हार है, जबकि मैनचेस्टर सिटी के लिए 4-4 जीत ही जीत। आर्सेनल के साथ 12 अंक, केवल गोल डिफरेंस पर आर्सेनल आगे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 13वें पोजीशन पे हैं, 13th पोजीशन, 4 अंकों के साथ। कल के पहले मैच में ब्राइटन के लिए ब्राइट उसने कोवेंट्री सिटी को 5-0 से पछाड़ा। आज लीड्स यूनाइटेड का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से होगा। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में शेफील्ड यूनाइटेड 0 वुल्व्स 1। स्कॉटिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में कल सेल्टिक की हार हुई, उसको हराया ग्लासगो रेंजर्स ने 3-0 से। वेमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 चेल्सी 5। स्पेन के ला लीगा में लेवेंटे 2 बार्सिलोना 4, लामिन यमाल का डबल, सेल्टा विगो 1 मालागा 1।

0: Retafe 1, Deportivo 1, Real Sociedad 0, Atletico Madrid 3. Germany ke Bundesliga mein Bayern Munich 2, Elverberg 1, RB Leipzig 5, Hamburg SV 0. Italy ke Serie A mein Juventus ki haar, Sassuolo ne use 3, 2 se haraya, Lecce 3, Monza 2, Napoli 1, Bologna 0. France ke Ligue 1 mein Lille 2, 3, 0, Le Mans 2, Lens 2, Paris Saint-Germain ne Evojaker Brest 1-0 se haraya. Tennis, US Open ka champion bana Alexander Zverev, final mein usne home favorite Shelton ko haraya. French Open ke baad US Open bhi jeet paya Zverev. Formula 1 Motor Racing Championship ke Spanish Grand Prix mein Kimi Antonelli ki jeet, Lando Norris Virtual Safety Car period mein lead ko baitha aur Antonelli ne iska fayda uthaya. Antonelli up championship mein 81 and 81 points ahead. Cricket Women's Asia Cup Bharatiya team ke naam final mein kal Bharat ki mahila team ne Sri Lanka ko 72-72 runon se haraya. Ye team India ka 8th title hai. Ladkiyan champion to ladke bhi kam nahi. Team India ne pehle T20 match mein Afghanistan ko 7 wicket se haraya. Abhishek Sharma top scorer raha 82 runon ke saath. Mauritius mein bhi cricket island cricket extravaganza ke 4th edition ka champion bana Campus Abroad Lions. Final mein Campus Abroad Lions ne Continental Cheetahs ko haraya. Mapu ke SS Sao National Cricket Ground mein kal dhoom-dham ke saath final khela gaya. पहले बैटिंग करते हुए कैंपस अब्रोड ने 123 रनों का टारगेट रखा पर कॉन्टिनेंटल चीतास केवल 79 रन पर ऑल आउट हो गए. इस साल का आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा खास रहा क्योंकि मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर बन गया है और ओलंपिक कमेटी का भी सदस्य बन गया है. बॉक्स फ्रांसेस में फ्रांस में लगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मॉरिशस 4 मेडल जीत पाया. एक सिल्वर मेडल ग्रिगोरी टोमासू ने जीता, फिर फ्लोरियन सुब्दुराली, जेसिका नोबर्स, चनिष्ठा जोशी ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए. और कल रात ISPL डेमिल की टीम का शानदार स्वागत किया गया. सरजू गारुशंकर के जवानों ने इतिहास रचा, एवे जाकर क्वालिफिकेशन ले पाए. दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. वैसे कह रहे हैं कि वॉ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से चुराया. क्या चुराया? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो गोल स्कोर नहीं किया, 10 खिलाड़ियों के साथ मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया. हाँ, वॉ का वार देखेंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत. दूसरी हार मैनचेस्टर यूनाइटेड को संभलना होगा आगे. हैव अ वंडरफुल डे एंड अ गुड वीक अहेड. टेक केयर, बाय बाय.
1: थैंक यू अरविंद.
2: A good beat for your morning show.
3: Come on.
2: Morning Beat, RM2.
3: Radio.

0: B for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: चलिए जी, यहाँ पर विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू लीना. जी हाँ, लीना, ये है लीना बीकारी ऑफ मौसलमा सैदा उद्रे. और आपको हैप्पी बर्थडे विश करें आपके हस्बैंड शर्वानन, आंतीश, शर्वेना, रेशमा, रीता, सुदेश, सभी बीकारी फैमिली की ओर से विशिंग यू अ वेरी

0: जी यहाँ पर दीपक को कहेंगे गुड मॉर्निंग, सिस्टर वंदना को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड नेक्स्ट गाना उनके लिए वीना सत्या भामा, और आज आपका जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना करते हैं आपके नाम।
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: दोस्तों अगले गाने के साथ मेरा अभी जाने का समय हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अब हमारे बाद आ रही हैं पूनम, चल विकास भी आ गए हैं, देखते हैं आप बस जो एंटरटेनमेंट है उसको एंजॉय करते रहिए.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2, Radio.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं।

0: चलिए सुबह के ठीक 9 बजे है। सुनते समाचार आपसे पूजा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी को मेरा नमस्कार। विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बाबा की मूर्ति स्थापना की जा रही है। भक्त पूरी रात भक्ति में लीन और पारंपरिक झाकरी नृत्य के साथ रात जागरण कल श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बाबा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त ढोल नगारों और जयकारों के बीच बाबा को विदाई देंगे। हिंदी सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है। भारत से लेकर मॉरिशस और दुनिया के कई देशों तक हिंदी ने अपनी जड़ों को संभालते हुए बदलते समय के साथ खुद को नई पहचान दी है। आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के समक्ष दिन 3 बड़े मामलों की सुनवाई शुरू हो रही है। इनमें रिवॉर्ड मनी, इकोडिया, पॉक एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला ब्रिटेन के

0: पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद पेश आया। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों. सुबह के 9:08 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आरएम टू रेडियो मस्ती में. मैं हूं आपके साथ पूनम. कल गणेश चतुर्थी है और बप्पा सबके घर ऑलरेडी आ चुके हैं. कोई पूजा में लगा है, कोई खाना बना रहा है और बप्पा सबकी बातें दिल से सुन रहे हैं. बप्पा ने माता पिता को सब कुछ माना और हम मानते हैं अपने पप्पा को. तो बस सबके घरों में सुख समृद्धि रहे, पप्पा सबकी बातें सुने, घर में खुशियों का माहौल रहे और आपके माता पिता का आपको प्यार और आप माता पिता को प्यार देते रहे. हम तो यही चाहेंगे. आरएम टू रेडियो मस्ती में आप सभी का स्वागत है. सुबह सबसे पहले नीतू शाह साथ थी आपके, उसके बाद वेदिता और अब ड्यूटी है मेरी. तो हम भी अपनी ड्यूटी अपने दिल से निभाते हैं. 9 से 12 हम चलाएंगे वो प्यारे से गाने जिससे आपका मूड बने और आप पप्पा के पूजा पाठ करते रहें. साथ में जो ऑफिस में है चाहे कहीं पे भी है, आपको बस खुशियां मिले. तो एंजॉय कीजिए अपना मॉर्निंग मस्ती मॉर्निंग प्रोग्राम मेरे साथ पूनम के साथ.
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:17 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। सुबह 9 से 12 मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो ये जो टाइम है ना, जो मंडे आता है, कभी कभी ना लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी सैडनेस लेके आ जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे इतनी मस्ती की होती है, घर में रहे होते हैं, कुछ सेलिब्रेट किया होता है, कुछ पार्टी की होती है, पर फिर मंडे आ जाता है और एहसास होता है कि अरे फिर से काम करना पड़ेगा। पर आपको पता है कि आपका ये जो मंडे है ना, ये आपके फिर नेक्स्ट वीक को रीजनरेट करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है। और आपके पास जब पैसे होते हैं तभी तो खर्चने के लिए हमको ये सैटरडे संडे मिलता है, तभी तो हम कुछ कर पाते हैं, घर के लिए शॉपिंग कर पाते हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो हम तो यही कहते हैं भाई, मॉर्निंग जो है ना मंडे की, इसको बड़ी सी स्माइल के साथ लेके चलिए, इसको वेलकम कीजिए। क्योंकि जब मंडे अगर ठीक हो गया ना, तो आपका पूरा वीक इतना रिलैक्सेशन वाला होता है, आपको रिलैक्स भी रहेगा और साथ में आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि भैया फिर से सैटरडे संडे आ गया। तो हम तो यही कहेंगे आपको कि अगर जो बड़े थके हुए हो तो थोड़ी सी एनर्जी ले आओ, गाने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यहाँ चलेंगे। तो ये गाना स्पेशली हम चलाने जा रहे हैं मंडे के लिए, और मंडे को करते हैं सेलिब्रेट।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:31 हो चुके हैं दोस्तों, और बाहर का मौसम का तो बात ही क्या है। धूप निकली है, ठंडी हवा के साथ सुनहरी धूप है, और ऐसे मौसम में अगर गाने ऐसे चले ना तो दिल खुश हो जाता है। और आज का दिन तो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज बॉलीवुड के एक टैलेंटेड एक्टर, चाहे उन्हें आप सिंगर के रूप में लीजिए, चाहे आप उन्हें एक्टर के रूप में लीजिए, यस हम बात कर रहे हैं अंशुमन

0: कि आज उनका बर्थडे है, तो चलो उनके लिए कुछ स्पेशल हो जाए, उन्हीं की तरफ से कोई ऐसा गाना सुने, क्योंकि गाने तो कई बार बनते हैं पर कोई कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता है। तो अगर आपके घर में भी किसी का बर्थडे है, किसी दोस्त का, किसी फैमिली मेम्बर का, तो हमें ज़रूर बताइए 5491294 पर। हम यहाँ से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पर आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि आज थोड़ा झूमने का दिन है, तो झूमो, इंजॉय करो, गाने आपके हैं।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: It's a unisex song.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty. Your daily horoscope. RM2 Radio Musty.
2: 9:44 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ में और मंडे की पहली हफ्ते की शुरुआत है तो हम थोड़ा काम में कहते हैं कि कुछ नया होता रहना चाहिए और देखते हैं जानते हैं आज आपका राशिफल आप सबके लिए क्या लिख रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं
3: एरीज मेष राशि।
2: आज सुबह से ही काम में अच्छी रफ्तार रहेगी, कोई नया टास्क मिले तो आगे बढ़कर संभालिए, बस जल्दबाजी में कोई छोटी बात मत भूल जाइए। ऑफिस में जो भी काम आपको दिया जाए जरूर अच्छे से कीजिएगा। लकी कलर बनेगा आपका रेड, लकी नंबर है 5।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज पैसे और शॉपिंग में समझदारी काम आएगी, घर की कोई छोटी बात आपको खुश कर सकती है। बिजी शेड्यूल में खाना समय पे ही रखिएगा, कहीं भूल ना जाइएगा, लेट ना हो जाएगा, तब थोड़ी सी लगता है कि हेल्थ में थोड़ा इश्यू आ जाए, इसलिए खाने को आप बिल्कुल कंसिडर करें सबसे पहले। लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन, लकी नंबर है 6।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आज आपकी बातचीत कोई काम बना सकती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छी पकड़ मिलेगी, किसी दोस्त का मैसेज मूड और अच्छा कर सकता है। लकी कलर बनेगा येलो और लकी नंबर है 3।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: आज परिवार से मिला सपोर्ट आपको एनर्जी देगा, काम में भी लोगों का अच्छा साथ मिल सकता है आपको, सबकी केयर करते हैं आप इसलिए आपको अपना भी केयर करनी है। लकी कलर बनेगा आपका वाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि।
2: आज आपकी पर्सनालिटी और काम दोनों नोटिस होंगे, कोई अच्छी जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है, ऑफिस में आपको आपके बॉस आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए लेकिन दूसरों को साथ लेकर भी चलिए। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि।
2: आज अपनी छोटी सी लिस्ट बनाकर

0: दिन की शुरुआत या वीक की शुरुआत कीजिएगा। एक पेंडिंग काम पूरा होने की खुशी मिल सकती है आपको। स्टूडेंट्स हो तो रिवीजन करते रहिए और आपके जो भी काम कंप्लीट होते जाएं उसको टिक करते जाइएगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपने कितना काम कर लिया। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज रिश्तों में प्यार और हल्की फुल्की मस्ती रहेगी। टीम वर्क से कोई मुश्किल काम आसान हो जाएगा। किसी अपने की तारीफ दिल से जरूर कीजिए। लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज करियर को लेकर कोई अच्छा आइडिया आ सकता है। अपनी बात कॉन्फिडेंस से सामने रखिए। काम के बाद दिमाग को थोड़ा सा आराम जरूर दीजिएगा। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज रूटीन से थोड़ा अलग करने का मन होगा। नई जानकारी या नया एक्सपीरियंस काम आ सकता है। मस्ती कीजिए लेकिन खर्च का हिसाब साथ साथ रखते चलिएगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपकी मेहनत का अच्छा असर दिखाई देगा। पैसों से जुड़ा छोटा फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। शाम के लिए फैमिली टाइम भी निकालिएगा और थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालिएगा। कुछ किताब पढ़ सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ देखने आपको मिल जाए जिससे आपके थोड़ा सा दिमाग को सुकून मिले, वो ज़रूर कीजिएगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 5।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपका क्रिएटिव आइडिया कमाल कर सकता है। नई चीज़ें सीखने के लिए दिन अच्छा है। किसी को मदद चाहिए तो थोड़ा समय ज़रूर दीजिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 6।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन खुश रहेगा और काम में फोकस भी रहेगा। किसी अपने की प्यारी बात से आपका दिन बन सकता है। अपनी पसंद की कोई छोटी चीज़ भी आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, जिसको आपको हर वक्त आप अपने सामने देख सकें, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको लगे कि आपको काम करने की एक एनर्जी अलग से मिले। लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों मंडे की

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check. सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से. पूजा आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. सभी को मेरा नमस्कार. मॉरिशस में विशेषकर मराठी समुदाय में विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापना की जा रही है. भक्त पूरी रात भक्ति में लीन और पूजा आरती के साथ पारंपरिक झाकरी नृत्य के साथ रात जागरण कर श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा. भक्त ढोल नगारों और जयकारों के बीच बाप्पा को विदाई देंगे. हिंदी मात्र शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है. आज 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है. आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष 3 बड़े मामलों की सुनवाई. इनमें रिवॉर्ड मनी, इकोडिया पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल. विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया. ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद पेश आया. तो ये थी अब तक की खबरें. कुछ ही समय में शोक समाचार. मोसेलमा यूआरएस ग्रांबोआ में 78 साल की 78 years old श्रीमती जगवंती सिबरत पैदाशी नाम उस्मान और जिन्हें लोग सोनी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे इनके बेटे गौतम सिबरत के मकान मोसेलमा यूआरएस ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारिशानी रोजबैल किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM. और सिमिट्री रोडला सूजी ने इस कार्य में 82 साल की 82 years old है श्रीमती बुधनी कोमल जिन्हें लोग लीलो नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे मनोज रामलोगन के मकान सिमिट्री रोडला सूजिन लेस्कालिये से उठाकर बासेकारोंग लेस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे अप टू 3:30 PM. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.
0: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:14 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं मस्ती मॉर्निंग के साथ में और हमारी पूरी एमबीसी आपको विश करती है गणेश चतुर्थी की। अपने अपने घरों में आपको सुख समृद्धि, हमेशा खुशियां आपके घर में झूमती रहे, नाचती रहे। और हम तो गानों के साथ आपके साथ बॉलीवुड को जुड़े रखते हैं और हमेशा उन गानों को चलाते हैं जिससे आपका मूड अच्छा होता रहे और साथ साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहे। और हम तो चाहते हैं कि भाई ये जो गाने तो चल रहे हैं, साथ में आपके मैसेजेस भी दो तीन ले लें, तो साथ में ये

समय हमारे जुड़े हुए हैं राजन जी लंदन से साथ दे रहे हैं, लीला जी जुड़ी हुई हैं, राम निवास जी साथ दे रहे हैं, ईशिता और ललित जी यूएस से साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी वाइफ का कल बर्थडे है और मैं उनको विश कर रहा हूँ कि और वो इस समय इंडिया में प्रोग्राम सुन रही हैं और उनको विश कर रहे हैं विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी का हर सुख दुख में साथ निभाते हैं, एंड यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच ललित जी, आपने इतना हमारे साथ शेयर किया है इस प्यार को, तो हम तो यही कहेंगे भी आपकी वाइफ का भी बर्थडे लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहें आप, उनके बर्थडे पे सारी खुशियाँ और गिफ्ट ज़रूर उनको मिलना चाहिए भाई, विदाउट गिफ्ट तो कुछ काम नहीं चलने वाला है, क्यों है ना। तो विश्वानी धूमन जी साथ दे रही हैं और सभी परिवार के लिए बेस्ट विशेज भेज रही हैं, और साथ में हाजरा कृष्णा सुधीर जी, प्रिया, सुकेश, नीला, विधि सबको कह रही हैं कि प्लीज़ सब बच्चे जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है विधि, आप ग्लेन पार्क से हैं और आप सभी के लिए विश कर रही हैं और विश मांग रही हैं कि सब बच्चे पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेकर पास हों, तो हम भी यही आपको कहेंगे। आपने अच्छा मैसेज दिया हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर लो भाई, देखो आपके सबके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली सब चिंता कर रही है आपके रिजल्ट्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम इतना ही कहेंगे, अपने घर में खुशियाँ हों और बर्थडे का तो ये स्पेशल हम चलाते ही हैं, ये दिस इज़ फॉर यू, आपकी वाइफ के लिए।

0: from Radio Musti.
1: Welcome to RM2.
2: Musti Mornings, Radio Musti.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी चुरावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। चुरावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। चुरावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी, सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
3: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा एवेस्टी करे, जो निर्भर रही की कि आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो

0: पर्सन लास्योरेंस जुन तुहर परिवार की सुरक्षा करी आ तुहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
2: RM2 Radio

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप

0: tops, sherwanis, complete suits, blazers and much more at unbeatable prices. Halkuri Fashion, Royal Road opposite Poplar Moose's Garden. Phone number 5799-3782. Halkuri Fashion, Parampara, Elegance and Quality. गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 10:35 हो चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ हमें बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्या खाने में दे सकते हैं। हम तो आपको इतना ही बोलेंगे कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो शुगर वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड कीजिए। सबसे पहले हम अवॉइड वाली बता रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको रात रात तक पढ़ना होता है। कई बार स्टूडेंट्स सुबह सोते हैं, क्योंकि जब सब लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है, पर वो थौकिल में यानी कि बिल्कुल शांत जहाँ पर होता है वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो आपको उनको कोई शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी है, आपको उनको नेचुरल जूस देने हैं अगर हो सके तो। अगर उसको फिर भी क्रेविंग हो रहा है कुछ मीठा खाने का तो आप खजूर दे सकते हैं, उनको बनाना दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, कोई भी अलग अलग तरह के फ्रूट्स आप ला के रखिए, उसकी स्मूदी बना के दे सकते हैं बच्चों के लिए। और स्पेशली अगर आपको और भी अच्छा कुछ करना है ना, क्योंकि आजकल बच्चों को थोड़ा सा ठंड, कभी बाहर ठंडी थी गर्मी थी, तो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक चम्मच देसी घी लेना है, हमने पहले भी बताया था पर फिर से आपको बता रहे हैं क्योंकि बार बार सब पूछ रहे हैं। तो एक चम्मच देसी घी लेना है, देसी घी के अंदर आपको एक चम्मच या डेढ़ चम्मच सिर्फ बेसन लेना है। अच्छा बेसन लीजिएगा, उसको हल्का हल्का भुनिएगा, 3-4 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे भुनते भुनते जब वो उसके अंदर से एक सौंधी खुशबू आने लगे तो उसके अंदर आपको एक चुटकी इलायची पाउडर डालना है। उसके अंदर आपको अगर गुड़ है आपके पास तो जैगरी डाल दीजिए, हल्की सी शुगर डालिए, और या उसके अंदर हनी डालें, आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है वो डाल दीजिए। उसके अंदर धीरे धीरे जब आप करेंगे उसमें थोड़े से बादाम डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स दिखते हैं वो डाल दीजिए। उनको भी बेसन के साथ थोड़ा थोड़ा भून लीजिए। जब 5 मिनट हो जाएंगे, इतना स्लो फ्लेम पे करिएगा कि मतलब 5 मिनट लगे आपको 1.5 चम्मच 2 चम्मच भुनने के लिए। उसके बाद एक ग्लास पानी लीजिए, उसके अंदर डालिए और उसको उबलने दीजिए। जब उबलता रहेगा वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट, जब उबलेगा वो जो उसका जो टेस्ट है उसकी स्वीटनेस है वो भी रहेगी उसके अंदर, और उसके बाद आराम से आप उसको पीते रहे। अगर आप हेड कवर कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं बेसन का शीरा, या बेसन का सूप कह सकते हैं, बट वो स्वीट होता है, पर ये आपके सेंसेस को खोलता है। आप उसकी जो खुशबू है उसको लेते रहिएगा, इनहेल करते रहिएगा, और आपको अगर सर्दी है तो हट जाएगी, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक तरह से एक कंप्लीट फूड है बेसन, जब वो सूप के जैसे हो जाता है। तो इस सारी फॉर्म्स में आप यूज़ कर सकते हैं, और जिनको स्टूडेंट्स हैं आप ज़रूर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और पेरेंट्स को तो हम यही बोलते हैं हमेशा के लिए कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्राई करते रहना चाहिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है और ख़ुद के लिए भी। और कभी कभी कुछ बनाना भी, जब घर में मूड होता है और टाइम मिलता है तो ज़रूर कुछ बनाना चाहिए। इन्जॉय कीजिए गानों को।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी, सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
3: अच्छा दोस्तों, आज का फैशन टिप हमारी प्यारी मम्मियों के लिए है। अगर आपकी मम्मी कहीं बाहर जा रही हैं और आप उन्हें आज बाहर लेकर जा रहे हैं और उनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है कि उनकी जो कपड़ों की लंबाई है, उनका कंफर्ट है, ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे सलवार पहन रहे हैं वो या पजामी पहन रहे हैं या कोई ऐसी ड्रेस या साड़ी जो कि बहुत लंबी होती है और पैरों में अटकती है और मतलब चलने में उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उनका फुटवेयर अच्छा नहीं है, मतलब उन्होंने जो चप्पल पहनी है या सैंडल पहना या हील्स पहनी है या जो बिल्कुल फ्लैट पहने हैं, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, जिसका ग्रिप नहीं है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चलना। तो हम आपको यही कहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा जैसे अगर उनकी उम्र है तो थोड़ा सा अपनी हील्स को बिल्कुल फ्लैट रखिए और मतलब उस पर कोई सैंडल ऐसे ना हो जिससे उनको डिस्कम्फर्ट हो। और जो साड़ी है थोड़ी सी ऊपर पहनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आराम से कॉन्फिडेंस से चल पाएँ, थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह पे अटके ना उनका पैर। और सबसे बड़ी बात होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको हो सके तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी चाहिए, ज़्यादा गोल्ड या कोई ऐसी चीज़ ना पहने जिससे उनको कॉन्फिडेंस तो रहता है पर डिस्कम्फर्ट होता है, गिरने की टेंशन होती है, उनको दिल करता है नहीं मैं घर में ही रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कहीं किसी फंक्शन या कहीं पर जा रहे हैं तो उनको हल्की सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाएं, उनका अच्छा सा हल्का सा लाइट सा मेकअप करें, क्योंकि फैशन सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है। और हम तो यही हमेशा कहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने कुछ हल्का हल्का फुल्का भी पहना है पर आपके चेहरे पर स्माइल है, तो सब आपको प्यार करेंगे, सब आपके साथ चलेंगे। तो एंजॉय कीजिए गानों को। बस इतनी ये टिप ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस से ज्यादा अपना कंफर्ट भी ध्यान रखिएगा और कंफर्ट से ज्यादा अपनी स्माइल पर ध्यान दीजिएगा।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 Radio Musty.

0: Actu.
1: Radio Musty.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
2: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
3: Milo, libère ta force.
2: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
3: Milo, libère ta force.
2: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
6: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
7: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ. यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स. जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी. जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंट जोसेफ स्ट्रीट एंड ओकाद वेजनी, सेंट्रल फ्लैग. फोन नंबर 4132651.
8: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। समस्त हिंदू खासकर मराठी समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी पर्व

0: मना रही है। आज सुबह से मंदिरों, सभा संगठनों और भक्तों के घरों में गणेश जी की पूजा विधि, स्थापना विधि की जा रही है और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना आज कई घरों में की जा रही है। आज रात भर जागरण किया जाएगा और कल विसर्जन समारोह लगेगा। मूर्तियों को तालाब, नदियों और समुद्र में विसर्जित किया जाएगा। गणेश भगवान सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है और किसी भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले उनका नाम लिया जाता है। कल मतलब आज सारी रात भगवान गणेश जी की पूजा की जाएगी। भक्तों, भक्त माता पार्वती और शिव जी के पुत्र विनायक को समर्पित भजन कीर्तन करेंगे। गणेश विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, उनकी कृपा पाने के लिए आज पूरी रात जागरण किया जाएगा। हर साल की तरह आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ने वाली मजबूत कड़ी है। मॉरिशस समय भी हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ हिंदी भाषा साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि अपनी भाषा का सम्मान करना, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। प्रवीण कुमार जगनाथ की टीम की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री आज सोमवार सुबह लाइन बैरक्स के सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CCID नहीं जा रहे हैं। उनके वकील दूसरे मामलों में व्यस्त हैं, इसलिए वे उनके साथ CCID नहीं जा सकेंगे। CCID ने नई तारीख तय करने पर सहमति जताई है। इससे उनके वकीलों को भी आवश्यक तैयारियां करने का समय मिल जाएगा। प्रवीण कुमार जगनाथ ने शुक्रवार 11 सितंबर को घोंबुआ में MSM की एक सभा के दौरान बताया था कि उन्हें CCID में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें ये समन पावती के सम्मेलन से एक दिन पहले मिला था। याद रहे कि प्रवीण कुमार जगनाथ को इससे पहले मंगलवार 1 सितंबर को भी CCID में बुलाया गया था। ये जांच फोन टैपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की खरीद और उनके इस्तेमाल से जुड़ी है। ये जांच मुस्ताश लीक्स मामले के बाद शुरू हुई थी, जो अक्टूबर 2024 में चुनावी अभियान के दौरान सामने आया था। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। यहूदीन में हुए इस हमले में ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शुभ समाचारों की ओर। पावे रोड पिचिराफ्री में 65 साल की 65 years old श्रीमती धनमती रंगलोल जिन्हें लोग सुचिता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे यूपी रंगलोल के मकान पावे रोड पिचिराफ्री से उठाकर दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे एट 2 PM। मुसलमान UAS Grandbois में 78 साल की 78 years old श्रीमती जगवंती सिबरत पैदाशी नाम उस्मान और जिन्हें लोग सोनी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज शाम 3:30 इनके बेटे गौतम सिबरत के मकान मुसलमान UAS Grandbois से उठाकर मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: MPC-च्यावतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MPC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी.

0: एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। अरे बच्चों, जो ये बप्पा है ना, बस थोड़े दिन के लिए ही आते हैं, घर में पार्टी जैसा माहौल कर जाते हैं और पूरे घर की सफाई हो जाती है, सजावट हो जाती है और हमारे प्यारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे राजा रानी के जैसे बन जाते हैं। और बप्पा बस जब विदा लेते हैं तो उनका चेहरा उदास हो जाता है, पर हम समझ सकते हैं। पर हम क्या करें, बच्चों को कैसे समझाएं कि बप्पा हमेशा तो नहीं साथ रहने वाले। हमने तो बस एक दिल से खुशी होती है कि वो आ रहे हैं, और इसके बाद जैसे कहते हैं ना, गेस्ट अपने घर वापस जाते हैं, वैसे हमारे पप्पा अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं। तो हम तो आप सबको यही कहेंगे कि खूब इंजॉय करो, ये जो मोमेंट है ना, इसको इंजॉय करना है। आज वो है, उनका बर्थडे है, तो कल तो बस वो आ चुके हैं, उनको अपने दिल में रखिए, अपनी ज़िंदगी में रखिए। और जैसे पप्पा ने अपने गणेश जी ने जैसे अपने मम्मी पापा यानी कि शिवा और पार्वती जी को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया है, वैसे आप सब भी देते रहिए। एंजॉय कीजिए गानों को और साथ में धूम मचाएं, ये गाना आप सब के लिए।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: यू नो दैट थिंग मस्ट बी 100 इयर्स ओल्ड।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et un bon spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudis et vendredis, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et bonne l'école, compagnie et bonne groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux. Avec bon spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à la même, l'eau 50 50 94 13.
3: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Masti.
1: जिस तरह फूल खुशबू के बगैर बेकार है, जिस तरह चांदनी चांद के बगैर तन्हा है अकेली है, जिस तरह लहरें सागर के बगैर बेमानी है, उसी तरह ख्वाब के बगैर जिंदगी आधी है, अधूरी है। जिंदगी ख्वाबों का एक सिलसिला है, कभी ये ख्वाब कभी वो ख्वाब, और जब एक ख्वाब पूरा हो जाए तो दूसरे ख्वाब की ख्वाहिश। जिंदगी की सांस पर छेड़ी हुई खूबसूरत गजल है ख्वाब, कुछ सुरमे कुछ बेसुरे, कुछ खूबसूरत कुछ बदशक्ल। कुछ ख्वाब ऐसे भी हैं जो इंसान इसलिए देखता है क्योंकि वो जानता है वो कभी सच नहीं होंगे, शायद इसलिए उसे ख्वाब कहते हैं। जो पूरा हो गया वो ख्वाब कैसा। मुझे ख्वाबों की आदत है, मैंने भी कुछ ख्वाब देखे हैं, हर दिन हर पल, और शायद तमाम उम्र देखता रहूंगा, हमेशा देखता रहूंगा, क्योंकि ख्वाब कभी नहीं टूटते, ख्वाब कभी खत्म नहीं होते। मेरे कुछ ख्वाब

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मुझसे दोस्ती करोगे, बहुत ही प्यारा सा गाना था आशा भोसले और अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे। पर हमारी तो वैसे ही दोस्ती है क्योंकि आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ 24 आवर्स जुड़े होते हैं और हम बहुत सारे गानों के साथ आपके मैसेजेस भी पढ़ते हैं, आपसे बातें भी करते हैं, पर आपको छोटे छोटे से टिप्स भी देते रहते हैं क्योंकि हमारे कई बच्चे होते हैं जिनको चीज़ें नहीं पता होती। यंग मतलब मम्मी पापा को तो चीज़ें पता होती है, पर हमें तो बताना पड़ता है कि हमारे बच्चों को भी आगे कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहे। तो चलिए भाई, हम एक बड़ा सा प्यारा सा एक आपके लिए टिप लेकर आए हैं। अगर आप इस समय कोई ऐसा यंगस्टर बच्चा सुन रहा है जिसको कुछ खाना बनाना बहुत पसंद है, तो हम आपको इतना ही कहेंगे, खाना बनाना ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं। पर आपको एक काम ज़रूर करना है कि अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में कुछ चीज़ क्रश कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ भी डाला, क्रश कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, तो आपको उसमें जब आप उसका काम ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर आप हाथ डाल के या उसमें डिश वॉशर डाल के उससे क्लीन मत कीजिए। आपका बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये कि आप उसके अंदर जैसे हो जाए आपका जो जार है क्लीन हो जाए, उसको पानी से रिंस कीजिए, उसके बाद उसको पानी क्लीन कर दीजिए, जार क्लीन कर दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा डिश वॉशर डालिए, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालिए और उसको फिर से एक बार ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिए और देखिएगा कि वो बिल्कुल एकदम जार आपका क्लीन हो जाएगा। आपको हाथों से प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कट का कोई टेंशन नहीं होगा और आपका काम ईजी हो जाएगा। और एक और टिप देना चाह रहे हैं हम लोग कि जैसे आप अलमीरा के अंदर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो आप बहुत भर भर के डाल देते हैं, एक बार तह के ऊपर तह लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो उसमें एयर पास नहीं होती है, मॉइस्चर रहने लग जाता है उसमें एक कपड़ों में एक स्मेल आने लग जाती है। आपने उसके अंदर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रखी जिससे खुशबू आती है तो वो भी जो खुशबू है वो थोड़ी सी खराब सी होने लगती है। तो आपको हम बस इतना ही कहेंगे, थोड़ा सा उसको शफल करते रहा करिए, हफ्ते में, दो हफ्ते में, तीन हफ्ते में आप उसमें सारा कपड़े बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद फिर से दोबारा रख दीजिए। देखिएगा एक तो वो बिल्कुल अच्छी ब्रीथ करेंगे और आपके कपड़ों में खुशबू रहेगी। यही हमारे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम आपको लगातार देते रहते हैं, बट करना आपको है। एंजॉय कीजिए गानों को।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: to Radio Musti. गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्यू घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. और केजी क्लासिक प्यू घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
1: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ में. मैं यहाँ हूँ. यहाँ आपके मैसेजेस बता देते हैं कि हम भी यहाँ हैं. तो चलिए आपके मैसेजेस ले लेते हैं थोड़े से. एमली आनंद एंड इंदिरा भिखारी जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को और बस ये कह रही हैं कोई भी गाना बस हमारे नाम पर होना चाहिए. मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप बता सकें ये वाला गाना. तो ये जो नेक्स्ट गाना होगा ये आप ही के लिए होगा. मैम हैप्पी बर्थडे टू लीना भिखारी एंड उनके हस्बैंड विश कर रहे हैं उनको. श्रव आनंद आंतिश श्रवीना रेशमा रीता सुदेश एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं बस ये बताओ कि गिफ्ट क्या चाहिए और यू आर वेरी स्पेशल और हमारे लिए तो तुम गिफ्ट हो पर तुमको क्या चाहिए ज़रूर बताना. क्या बात है भाई, बहुत अच्छा मौका है गिफ्ट लेने का. बस जल्दी से बता दो और हम भी आपको बोलेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर. इन्जॉय कीजिएगा अपने बर्थडे अपने परिवार और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में. सीता गीता भोला राम जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं. हिमाक्षी एंड सुनील की एंगेजमेंट है, वो कह रहे हैं गणपति बप्पा आए हैं तो हम भी सोच रहे हैं कि दोनों का साथ एक हो जाए और उनका पूरा परिवार उनको विश कर रहा है. उनको बोल रहा है कि भाई अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बनाना और इन्जॉय करना अपनी पूरी ज़िंदगी को. थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना प्यारा मैसेज शेयर करने के लिए और हम भी कहेंगे एक प्यारे से बंधन में बंधने जा रहे हैं. खुश रहिएगा हमेशा. रवि जी इंडिया से साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को. डैरन श्वेता रवीश प्रिशा लुवेशा आपादू फैमिली साथ दे रही है. मालिनी जी स्पेशली एवरी टाइम आपका कॉल मैसेज आता है या कॉल आता है हमेशा दिल को खुशी मिलती है. थैंक यू सो मच आप सभी का. एंजॉय कीजिए गानों को.
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुरी स्ट्रीट एंड औकात वेजनी सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

तो दोस्तों ये धमाकेदार मस्ती यहीं रुकती है। अब रेडियो तो बंद मत कीजिएगा, बट आपको क्योंकि बताने वाली हूँ मैं कि मेरे बाद जाने का तो टाइम हो गया, पर मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है नीलमणि का रेट्रो रिदम में, जहाँ पे पुराने गाने चलते हैं दिल से और खुशी से। मेरा नाम था पूनम, मैं साथ रही आपके सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कल। बाय बाय।

0: सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि सभी को मेरा नमस्कार। समस्त हिंदू खासकर मराठी समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी पर्व मना रहे हैं। आज सुबह से मंदिरों सभा संगठनों और भक्तों के घरों में गणेश जी की पूजा स्थापना विधि की जा रही है। जी हां, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना आज कई घरों में की जा रही है। आज रात भर जागरण किया जाएगा और कल विसर्जन समारोह लगेगा। मूर्तियों को तालाब नदियों व समुद्र में विसर्जित किया जाएगा। गणेश भगवान सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है और किसी भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले उनका नाम लिया जाता है। आज सारी रात भगवान गणेश जी की पूजा की जाएगी। भक्तों भक्त माता पार्वती और शिव जी के पुत्र विनायक को समर्पित भजन कीर्तन करेंगे। गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। उनकी कृपा पाने के लिए आज पूरी रात जागरण किया जाएगा। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदी ने समय के साथ खुद को बदला है। आज ये रेडियो टेलीविजन सिनेमा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। प्रवीण कुमार जगनाथ की टीम की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री आज सोमवार सुबह लैंड बैरक्स के सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं गए। उनके वकील राउफ गुलबुल और आइवान कोलेंडावेलू दूसरे मामलों में व्यस्त हैं, इसलिए वे उनके साथ सीसीआईडी नहीं जा सके। सीसीआईडी ने नई तारीख तय करने पर सहमति जताई है। इससे उनके वकीलों को भी आवश्यक तैयारियां करने का समय मिल जाएगा। विदेश में इस सप्ताहांत दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली नेता दिल्ली में एक विशाल राउंड टेबल में एकत्र हुए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके साथ बैठे नेताओं को मिलकर तेजी से नियमों को मानने वालों के बजाय नियम तय करने वालों की भूमिका निभानी चाहिए। बैठक में ब्रिक्स समूह के कई नेता भी मौजूद थे। इनमें चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।

0: शोक समाचार सुनिए। पावे रोड पे चिराफे में 65 साल की 65 years old श्रीमती धनमती रंगलोल, जिन्हें लोग सुचिता नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे यूपी रंगलोल के मकान पावे रोड पे चिराफे से उठाकर दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मौसलमा यूएस गांबुआ में 78 साल की 78 years old श्रीमती जगवंती सिबरत, पैदाशी नाम उस्मान और जिन्हें लोग सोनी नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे आज शाम 3:30 बजे इनके बेटे गौतम सिबरत के मकान मौसलमा यूएस गांबुआ से उठाकर मारी जानी रोजबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। लिबियातो पांडामनिकम लेन वाकुआम में 75 साल की 75 years old श्री विजय रामा, जिन्हें लोग जयसेन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे कल दिन के 2 बजे इनकी पत्नी इंदिरा रामा के मकान लिबियातो पांड मनिकम लेन वाकुआ से उठाकर थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। और रॉयल रोड बोआरूज पॉम्प्लेमूस में 80 साल के 80 years old श्री बिदिनन हर दाल जी तोगा, जिन्हें लोग सुखदेव नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सपहर के 3 बजे इनके मकान रॉयल रोड बोआरूज पॉम्प्लेमूस से उठाकर पॉम्प्लेमूस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Retro Rhythm.
1: एंड यस, गुड आफ्टरनून मेरे रेट्रो लवर्स. रेट्रो रिदम में आपका स्वागत है. इट्स नर्मनी. और आजकल जिंदगी में इतना सुंदर वक्त देखने को मिल रहा है और आज तो पूरे वर्ल्ड में बप्पा को सेलिब्रेट किया जा रहा है. कल है गणेश चतुर्थी, यानी कि बप्पा का स्पेशल डे, और उसकी खुशी और फेस्टिव वाइब्स अभी से ही हर तरफ महसूस हो रही है. म्यूजिक, रंग, ब्यूटीफुल मोमेंट्स. तो चाहे आप सेलिब्रेशंस का हिस्सा है, प्रिपरेशंस में बिजी है, या बस घर रह से इंजॉय कर रहे हैं, इस ब्यूटीफुल फेस्टिव स्पिरिट को मुस्कुराते रहिए, फील करते रहिए और रेट्रो रिदम के साथ अपने आफ्टरनून को बनाइए थोड़ा और मेलोडियस, क्योंकि आपके लिए रेट्रो गाने ला रही है नर्मनी 2 बजे तक. तो लेट्स गो, लेट्स डाइव.

0: to Radio Musti.
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2
2: रेडियो मस्ती

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे इजाजत बिल्कुल है 5499124 पर आपके मैसेजेस का। ज्योति जी साथ दे रही है शातू बिनागर से, नेक्स्ट गाना मांग रही है आशनी रेखा सुरेखा। मैडम फैमिली के लिए और गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं भी आपको दे रहे हैं, साथ में जिना जोयसरी जी भी बेस्ट विशेज गणेश चतुर्थी का आप सभी को दे रहे हैं। एंड अगला

0: से जफर्स मूवी का गाना हम तो तेरे आशिक हैं खास अब्दुल जी और सारा बानो जी के लिए मांग रहे हैं। तो चलिए धुंध कर चलाने की पूरी कोशिश जारी हो चुकी है, अब बस रिलैक्स कीजिए और जुड़े रहिए अपने ही रेट्रो रिदम में विद नर्मनी आरएमजी वीडियो मस्ती पर।
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2

0: to Radio Musti. जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
1: Cirque Zavada à Bagatelle. Prépose pour un moment magique et bon spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavada samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et bonne l'école, compagnie et bonne groupe, nous pas fin oubliez eux. Nous avons un package spécial pour eux avec bon spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à la même, l'eau 50 50 94 13.
2: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास।

0: रेट्रो रिदम।
1: नजर मिलते ही अगर होश उड़ जाए तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ तो है। प्यार व्यार तो हो ही गया, अब अगर सामने वाले की एक स्माइल पे दिल की धड़कन डीजे की बीट की तरह चेंज करने लगे, फोन बार बार चेक हो कि मैसेज आया कि नहीं और नाम सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाए, तो वाह, समझ जाओ कि केस सीरियस बन चुका है। तो दिल की इस छोटी सी गड़बड़ को एंजॉय कीजिए गानों के जरिए ऑफ कोर्स आपके रेट्रो रिदम में। एंड मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: Radio Musti. जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: RM2
4: Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे रेट्रो गानों में सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती थी, पूरी कहानी शेयर करते थे। हीरो की एंट्री, हीरोइन का इंट्रोडक्शन, प्यार का कंफ्यूजन, उफ हमारे रेट्रो सिंगर्स भी कमाल के थे। हर तरह के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेकर आते थे गानों को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ऐसे ही आपको 2 बजे तक एंटरटेन करने वाले हैं, तो आराम कीजिए। एंड अगर अभी आप लंच टाइम पर हो, आप खाने को एंजॉय कीजिए। बन अपेटी, ब्रेक के बाद अनदर रेट्रो सॉन्ग आपके इंतजार कर रहा है।
2: RM2 Radio Musti। जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
4: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m.
4: नमस्कार आदाब। सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्नेश्वर भगवान का गुणगान विश्व भर में है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। देश में उत्साह की अलग लहर है और आध्यात्म वातावरण के साथ साथ जश्न का माहौल है। आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ गणेश जी की मूर्तियों की आरती की जा रही है। वे भक्तों के यहाँ पधार कर उनकी सारी मनोकामनाएं सुनने आए हैं। आज रात भर देश के सभी इलाकों, मंदिरों और सभाओं में आरती की जाएगी। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में पारंपरिक नृत्य झांकरे भी की जा रही हैं। समस्त हिंदू परिवार, खासतौर पर मराठी समुदाय के लोग पारंपरिक लिबासों में मलबूस होकर महाराष्ट्र की परंपराएं निभाएंगे। आज सुबह सुप्रीम अदालत के एफसी डिवीजन में पहला मुकदमा शुरू हो गया। 3 मुख्य मामलों पर बहसें शुरू हो गई हैं। रिवॉर्ड मनी, इकोजिया पार्क एसोसिएशन और एडीबी के स्तर पर पक्षपात के मामले जज लक्ष्मी प्रसाद रजाइब के सामने किए जा रहे हैं। कल आम्स्टरडाम में, यानी परसों आम्स्टरडाम में अंतर्राष्ट्रीय ऑडियो विजुअल और मीडिया सम्मेलन में मॉरिशस में एक मीडिया सिटी बनवाने के लिए रणनीतिक साझेदारी कायम की गई। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर अफ्रीका ओटीएल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है ताकि इस परियोजना का टेक्नोलॉजिकल स्तंभ विकसित किया जा सके। मकसद मॉरिशस को ऑडियो विजुअल के क्षेत्र में कामयाब प्लेटफॉर्म बनाना और अफ्रीकी तथा अंतर्राष्ट्रीय

0: मंदियों की ओर जाने में देश को पुल की हैसियत देना। और कनाडा के प्रधानमंत्री मॉक कॉनी ने कहा कि वे अपने पड़ोसी देश पर निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ईयू का सदस्य देश बनना चाहता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कॉन्फालबेयर सेंट हुबेयर में 34 साल के 34 years old श्री प्रवेश दसारत, श्री प्रवेश दसारत जो प्रवेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज ढाई बजे इनके घर कॉन्फालबेयर सेंट हुबेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तुम्बू रेउद मेबर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 2:30 PM। सिटी से आशा रिविया जोंपा में 58 साल के 58 years old श्री राजेश कोकिल, श्री राजेश कोकिल जो कोकिल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दो बजे इनकी पत्नी अंशुया कोकिल के घर सिटी से आशा रिविया जोंपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंटेरास्को की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 2 PM। सर शॉल एली स्ट्रीट रुजिल में 78 साल के 78 years old श्री प्रकाश डेबी जो प्रकाश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे एलियनसन बोबासना से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डे एट 2:30 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:09 से होने को है और हम वापस आ गए हैं रेट्रो रिदम के सेकंड आवर में ढेर सारे रेट्रो गानों के साथ। 2 बजे तक नमन यही पर है तो इस आवर का लाभ उठाते हैं। जल्दी से सेंड अस योर मैसेजेस, आपकी डेडिकेशंस भी 5499-1294 पर रहने के लिए रेट्रो सिलसिले को जारी रखते हैं लता जी की आवाज में खास आपके लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: ए बाबू ले लो ना नारियल।

0: 2 Radio Musti.
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास. जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2
2: Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम। प्यार में अक्सर लोग खो जाते हैं, बह जाते हैं इमोशंस के जरिए, लेकिन रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कम्युनिकेटिंग ऑन टाइम एंड दूसरे की कदर करना, और बस प्यार ऐसे ही फ्लरिश करता रहेगा। बिल्कुल आप रेट्रो गानों की तरह, तो आप यहीं पर जुड़े रहना। एंड ऑल्सो 5491294 पर अगर आपकी कोई फरमाइश है, डेडिकेशंस है, विशेज है किसी के लिए, तो यू मोस्ट वेलकम जी 5491294 पर आपके मैसेजेस।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: Cirque Zavada à Bagatelle. Prépose pour un moment magique et bon spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavada samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et bonne l'école, compagnie et bon groupe, nous pas fin oubliez eux. Nous avons un package spécial pour eux avec bon spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à ce la même, l'eau 50 50 94 13.
4: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2

0: रेट्रो रिदम। वैसे जब किशोर कुमार जी और लता जी की आवाज मिलते हैं ना, तो मैजिकल समा बन जाता है। आशा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं मस्त रेट्रो सॉन्ग्स को। एंड साथ देने के लिए धन्यवाद। आप है विश्वानी धोमन जी वाकवा से, अपनी बहन इंदिरा, शारदा, सहेलियां नीला, प्रतिभा, शोभा के लिए गीत मांग रहे हैं। प्रकाशवती जी भी कनेक्टेड है, नाइस मंडे विश कर रहे हैं आप सभी को। एंड आप है अमिता जी, विश कर रहे हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड उमा को वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू उमा जी। आपको बता देते हैं कि आप शेयर कर रहे हैं अपना बर्थडे आयुष्मान खुराना के साथ, क्या बात। और आपके फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार जी, तो उनका एक गाना जरूर चलाएंगे आपके इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए। आप बस कनेक्टेड रहिए और हम जो वीडियो मस्ती के साथ में ही
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: FM2 Radio Musti. जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
1: RM2
0: रेडियो मस्ती

0: RM2
1: Radio Musti.
2: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
3: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं
2: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2
1: Radio Musti
4: Tick tick tick tick tick tick tick

वैसे टिक टिक करके घड़ी सच में भाग रही है, वक्त हो चला है बाय बाय कहने का, लेकिन नो वरीज, आपके लिए नेक्स्ट आने वाली है पूनम बॉम्बे टॉकर्स के साथ, लॉट्स ऑफ गॉसिप गुड म्यूजिक के साथ। तो आप यही बढ़ रहे ना कनेक्टेड आरएमजे रेडियो मस्ती पर।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Time check, दोपहर के दो बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
5: नमस्कार आदाब. सोशल मीडिया पर मलागासी उद्योगपति मामी गवातो मांग से जुड़ी बातों के पोस्ट के बारे में जानकर जॉन कॉल एलिजी आज सीसीआईडी गए ताकि इस मामले में जांच शुरू की जाए. उनके वकील अकील विशेषो के मुताबिक प्रधानमंत्री दफ्तर के पुराने सलाहकार ने जांचकर्ताओं को अपना मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव दिया जिसमें उनकी शिकायत से जुड़े पहलू सेव हैं. आज सुबह सुप्रीम अदालत के एफसी डिवीजन में पहले मुकदमे शुरू हुए हैं. तीन मुख्य मामलों पर बहसें शुरू हो गई हैं. रिवॉर्ड मनी, इकोडिया पॉक एसोसिएशन और एडीबी के स्तर पर पक्षपात के मामले जज लक्ष्मी प्रसाद उच्चायोग के सामने किए जा रहे हैं. सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्नेश्वर देवता का गुणगान विश्व भर में है. भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. देश में उत्साह की अलग लहर है और आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ जश्न का माहौल है. गणेश जी की मूर्तियों की आरती की जा रही है. वे भक्तों के यहाँ पधार कर उनकी सारी मनोकामनाएं सुनने आए हैं. आज रात भर देश के सभी इलाकों, घरों, विभिन्न घरों और मंदिरों, सभा समाजों में आरती की जाएगी. गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आज पारंपरिक नृत्य झांकरी की जा रही है. समस्त हिंदू परिवार, खासतौर पर मराठी समुदाय के लोग पारंपरिक लिबासों में मलबूस होकर महाराष्ट्र की परंपरा निभाएंगे. विदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री मक्रों ने कहा कि वे अपने पड़ोसी देश पर निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कनाडा ईयू का सदस्य देश बनना चाहता है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रॉयल रूट विचियम मिल ट्रियोले में 92 साल की 92 years old बीबी ओसेन बी सदाली, बीबी ओसेन बी सदाली जो जवानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं. जनाजा आज शाम सवा छह बजे इनकी बेटी सबरन जाफो के घर रॉयल रोड विचियामिल ट्रियोले से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंडी पापाय का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट क्वार्टर पास्ट 6 PM एवेन्यू सेंट एन स्टैनली रोजेल में 75 साल की 75

0: years old. Mohtarma Bibi Rasulbi Kandirali, Mohtarma Bibi Rasulbi Kandirali, Pedaishi Nam, Ketwahu, Jo Rasulbi Ke Nam Se, Ziada Jani Jati Tin, Tekal Kargai Hen, Janaza, Ajtin Baje, Ajtin Bajinke Ghar, Avenue Saint Anne, Stanley Rosil Se Utakar, Dafnani Kelie, Samotem, Oroshka, Khabaristan, Nijai Jaiga, Funeral Today at 3 pm. Shawley Street, Rosil में 78 साल के 78 years old श्री प्रकाश देबी जो प्रकाश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 2:30 बजे एलियनसन बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलीव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रेमेशन टुडे एट 2:30 PM कॉन्फाल बेयर सेंट ट्यूबे में 34 साल के 34 years old श्री प्रवेश दशरथ जो प्रवेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 2:30 बजे इनके घर कॉन्फालबेया सेंट ट्यूबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तुम्बू रोड मेंबर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है.
4: बॉम्बे टॉकीज़
5: रेडियो मस्ती.
6: रेडियो मस्ती.

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: 2:10 हो चुके हैं दोस्तों. नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. भाई देखिए क्या एक्साइटमेंट है यहाँ पे. ये जो गाना है ना, मतलब ये ऐसे ही नहीं है बस इसलिए बीट्स बने हैं. रियली में जब ये बीट्स बजते हैं, जब ये डांस हमारे यंगस्टर्स करते हैं और एहसास होता है कि क्या भाई ये गणेश चतुर्थी की तैयारियां हो रही हैं. इस समय सारे बच्चे जो हैं, सारे लोग जो हैं अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे होंगे और गणपति बप्पा को मना रहे होंगे, प्यार दे रहे होंगे, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए तो वो आते हैं. तो हम तो सभी को कहेंगे कि गणपति बप्पा आपके घर में खुशियाँ लाए, तरक्की लाए, खूब सारा प्यार लेकर आए. जो ये माहौल थोड़ा सा कहते हैं ना, इस टाइम इतना स्पिरिचुअल हो रखा है हर तरफ, जहाँ पे भी चाहे आपकी ड्रेसेस कह लो, चाहे खाने की बात कह लो, खुशबू की बात कर लो, इस टाइम गणपति बप्पा सबके घरों में इतना खुश होंगे क्योंकि इतने खाने बन रहे हैं, सभी की आओ भगत हो रही है और प्यार बांटा जा रहा है. तो हम तो यही कहते हैं ये मूड को ऐसे ही बनाए रखे. पर हम जोड़ते हैं उसमें बीच में छोटा सा एक एड ऑन करते हैं, फिल्मी गपशप, थोड़ी सी गप्पे मारते हैं बॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉलीवुड का क्या हालचाल है. तो ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ. नॉर्मली तो वो होता है परी का, पर आज मेरे को ड्यूटी मिली है और मैं हूँ आपके साथ पूनम.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies, Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हो तब भूल जा, एक जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के ही पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: 2:19 हो चुके हैं दोस्तों. आप जानते हैं गणपति बप्पा से प्यार तो हर जगह है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र का बप्पा से रिश्ता ही कुछ अलग सा है. बॉलीवुड के सितारे हो या बिजनेसमैन हो या आम कोई मुंबईकर हो, बप्पा के सामने सब एक साथ सर झुकाते हैं. और वहाँ झुकता है सर जहाँ पे है लाल कहते हैं ना, और लाल बाग का राजा जिसके दर्शन के लिए उत्साह से लाइनों पता नहीं कितने घंटों की लाइनें लगी रहती हैं, और सब हाथ जुड़ के ऐसे खड़े रहते हैं कि उनको बस एक बार दर्शन हो जाए लालबाग के राजा के. चाहे सभी ने अपने अपने गणपति लाए होते हैं, पर फिर भी हर कोई कोशिश करता है कि एक बार वहां पर जाके दर्शन हो सके. और घंटों के इंतजार के बाद बप्पा की भी एक ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं से सबको दर्शन दे ही देते हैं. और आप जानते हैं कि मुंबई जो होता है ना, वो रुक सा जाता है. चाहे कॉलेज हो, क्या कहते हैं, स्कूल हो, ऑफिस हो, बॉलीवुड हो, सब कुछ बंद होता है और वहां पर कोई काम नहीं होता. और सिर्फ एक चीज का इंतजार होता है, या तो गणपति बप्पा का, या दूसरा होता है वहां पर मूषक का. यानी कि घर में अगर आपको एक भी मूषक दिख जाए, यानी कि एक भी माउस दिख जाए, एक भी चूहा दिख जाए, तो कहते हैं उनकी हर कोई इच्छा पूरी हो जाती है. और इस चीज के इंतजार में वो पूरी सुबह से लेकर रात तक इंतजार करते हैं. तो यही तो खास बात है हर कहते हैं स्टेट की, हर एक कंट्री की कुछ ना कुछ अलग अनोखी बातें होती हैं जो हम लेकर आपके पास आते हैं और इंजॉय करते हैं. पर आपको इतना ही बोलेंगे, अगर आपको भी बप्पा से प्यार है, एक बार बोलिए गणपति बप्पा मोरिया.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
4: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसाई के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: टॉकीज रेडियो मस्ती
1: रेडियो मस्ती।
2: बॉम्बे टॉकीज की बात ही अलग है क्योंकि बॉम्बे लेकर आता है आपके लिए कुछ खास बॉलीवुड की वो बातें जो कि आपको नहीं पता होती हैं। चलो ठीक है, जिनको न्यूज़पेपर की पसंद है, न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या सोशल मीडिया से ले लेते हैं, उनकी तो बात अलग है, पर जिनको नहीं पता उनको भी तो हमने बतानी है ना। तो भाई इस समय जो सिचुएशन है बहुत ही खास सिचुएशन बनी पड़ी है। बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, कुछ फ्लॉप हो रही हैं, कुछ हिट हो रही हैं, कुछ बीच में अटकी पड़ी हैं, कुछ ऊपर टॉप पर जा रही हैं। तो जो टॉप पर जा रही हैं उनका भी नाम बताएंगे और जो फ्लॉप में जा रही हैं उनका भी बताएंगे। पर उससे पहले आज है हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर अंशुमन खुराना का बर्थडे और उनकी जो दमदार एक्टिंग है, चाहे उनको एक्टिंग में कह लो, उनकी पर्सनालिटी को लेके कह लो, उनका चार्म को कह लो, जितनी भी यंगस्टर्स हैं उनकी क्रेजी हो जाती हैं उनकी पर्सनालिटी को देख के। पर आज जो स्पेशल उनका खास बात जो है ना उनमें, वो ये है कि वो गाते भी बहुत अच्छा है और जब गाते हैं तो बस क्या बात है, माहौल को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। और खास हमेशा इतना ही कहते हैं वो स्माइल से कि मैं सभी को पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा फेवरेट ना हो, बस मैं अपने आप को छोड़कर मेरे लिए सब फेवरेट है। ये उनके हमेशा से टैगलाइन रही है क्योंकि वो हमेशा जानते हैं, क्योंकि जो ज़मीन पे जुड़ा होता है ना उसे एहसास होता है कि जो सुपरस्टार्स हैं उनकी बात क्या है, उनको कितनी फ़ैन फॉलोइंग है और उनको कितना पसंद किया जाता है बॉलीवुड में। तो भाई हम भी अंशुमन खुराना को बर्थडे विश करते हैं, पर ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो हमें सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, पर उनके जो फैंस हैं ज़रूर उनके लिए भी हम चलाते हैं एक स्पेशल गाना और एक स्पेशल हमारा जो हमारे दिल से निकलता है ये।

0: रेडियो मस्ती।
1: अगर आपके भी किसी खास का बर्थडे है तो हमें बताइए जरूर 5491294 पर। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है
4: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
5: रेडियो मस्ती।

0: 2 Radio Musti
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हुआ तब भूल जा एक और जरूरत नहीं पड़ी काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली डिजाइनर लहंगा लच्छा साड़ी जोधपुरी क्रॉप टॉप शेरवानी सूट ब्लेजर और भी सस्ता दाम में हलकोरी फैशन रॉयल रोड पॉम्पली मुसेस गार्डन के सामने फोन नंबर 5799-3782 हलकोरी फैशन परंपरा एलिगेंस और कारीते फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
2: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं वो भी जुरावन ब्रदर्स के साथ यूनिफॉर्म साड़ीज डिफरेंट कलर्स रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स जुरावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी जुरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल सेंट जोसेफ स्ट्रीट सेंट्रल फ्लैग फोन नंबर 4132651
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2 रेडियो मस्ती

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: आप सभी का स्वागत है भी बॉम्बे टॉकीज में, और जहाँ पे बात करते हैं हम बॉम्बे की यानी कि बॉलीवुड की। तो इस समय एक मूवी की जो जिसने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखी है, ना जाने वो किस मोमेंट पे बनी होगी, कब उसके दिमाग में डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दिमाग में ये पॉइंट आया होगा कि भाई इस पे बनाना है सिंपल मूवी। मतलब सिंपल यानी कि कंप्लीट सिंपल, कोई बड़ा एक्टर नहीं, कोई बड़े गाने नहीं, कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं जो जिसने काम किया हो, जो सड़क पे चल रहे थे, जो गांव में लोग थे, जहां पे भी जो लोकेशंस वो ढूंढ रहे थे वहां से किसी ना किसी एक्टर को पकड़ के ये मूवी बनी है। और उस पर इन्होंने जो काम, जो मूवी बनी दो करोड़ में बनी थी, यानी कि 2 करोड़ यानी कि 10 मिलियन मॉरिशन रुपीज़ में, और बिल्कुल सिंपल मूवी बनाई। पर उन्होंने आज की डेट में जो कमाई की है वो हो चुकी है 250 करोड़ से ऊपर, यानी कि हद है। क्या हनुमान जी की कृपा हुई है कि मतलब जिसने कभी नहीं सोचा था बॉलीवुड ने कि ऐसी भी सिंपल मूवी का को लोग इतना पसंद करेंगे, इतने उसके फैन फॉलोइंग हो जाएंगे। जिस एक्टर ने काम किया उसमें, जो मेन लीड है वो तो सिर्फ एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनने आया था, और उसको जो डायरेक्टर थे उसने बोला कि नहीं नहीं तुम में तो कुछ खास ही लग रहा है और तुम तो बनने लायक हो नीम करोली बाबा। और नीम करोली बाबा के ऊपर बनी है, हर एक प्रोडक्शन हाउस ने उसकी तारीफ की है, चाहे एक्टर की हो, डायरेक्टर की हो, प्रोड्यूसर की हो। प्रोड्यूसर ये कह रही है क्योंकि शी इज़ ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, और वो ये कह रही हैं कि भाई क्या करूँ मैं, इतने पैसे का कैसे स्पेंड करते हैं मुझे नहीं पता, आई एम स्टिल बेबी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसको कैसे यूटिलाइज करूँ, कहाँ क्या करूँ। तो उनके भी अपने बहुत सारे अब लोग समझाने लगे हैं कि क्या कर सकती हैं वो आगे चल के। पर ये भी एक लकी होता है भाई, एक अच्छी सी सोच रखी जाए और कुछ अलग सा दिमाग लाया जाए और अच्छी सी स्क्रिप्ट पब्लिक के सामने रखी जाए तो पब्लिक ज़रूर उसको पसंद करती है। स्क्रिप्ट के ऊपर 24 आवर्स, नहीं सिर्फ 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि 24 मंथ्स लगते हैं तब जाके एक मूवी के ऊपर कंसंट्रेशन मिलती है और ये बनती हैं ऐसी मूवीज़ जहाँ पर एक ही बारी में छक्का लग जाता है। तो भाई हम तो यही कहते हैं बॉलीवुड हमेशा आपके साथ है, जहाँ पे गाने हों चाहे मूवीज़ हों स्क्रिप्ट हो, बट हनुमान ज़रूर देख कर आए क्योंकि आपको भी मज़ा आएगा और कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए गानों को और उसके साथ में बढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद दूसरे अपडेट के ऊपर कि अभी और बॉलीवुड में क्या क्या चल रहा है।
1: More music is in the mix.
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: Radio Mustache।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, शाम के 4 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
6: नमस्कार रादाब. आज सिंगापुर की फौज ताकत के पुराने जनरल ओंग बुंग हुई ने प्रधानमंत्री से उनके दफ्तर पर मुलाकात की. नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन पर योजना के सिलसिले में बातचीत हुई. इस पहल के संदर्भ में सिंगापुर की महारत के अलावा नौजवानों में अंकित वतन परस्ती के जज्बात, मजबूती और मानसिक तैयारी पर जोर दिया गया. पढ़ने लिखने, गिनती करने और रोज़मर्रा ज़िंदगी का गुजारा करने में आत्मनिर्भरता. सन 1986 से नेशनल वीमेंस काउंसिल महिलाओं का समर्थन करती आ रही है. आज से परिषद ने कैथबोन में एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है. सोशल मीडिया पर मलागासी उद्योगपति मामी कवातो मांग से जुड़ी बातों के पोस्ट के बारे में जानकर जॉन कॉल एरिजे आज सेंट्रल सीआईडी गए ताकि इस मामले में जांच शुरू की जाए. उनके वकील अकील बिसेसो के मुताबिक प्रधानमंत्री दफ्तर के पुराने सलाहकार ने जांचकर्ताओं को अपना मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव दिए जिनमें उनकी शिकायत से जुड़े पहलू सेव्ड हैं. आज सुबह सुप्रीम अदालत के FC डिवीजन में पहले मुकदमे शुरू हुए. 3 मुख्य मामलों पर बहसें शुरू हो गई हैं. रिवॉर्ड मनी, इकोजिया पॉक एसोसिएशन और ईडीबी की सतह पर पक्षपात के मामले जज लक्ष्मी प्रसाद जायब के सामने किए जा रहे हैं. सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्नेश्वर भगवान का गुणगान विश्व भर में है. भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. देश में उत्साह की अलग लहर है. आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ जश्न का माहौल है. गणेश जी की मूर्तियों की आरती की जा रही है. वे भक्तों के यहाँ पधारकर उनकी सारी मनोकामनाएं सुनने आए हैं. आज रात भर देश के सभी इलाकों, मंदिरों और सभा समाजों में आरती की जाएगी. विदेश में यूक्रेन और पोलैंड की सरहद के पास एक रूसी ड्रोन हमला किया गया है. इससे कुछ देर पहले यूके के पुराने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय सुरक्षा अफसर वहां से गुजरे थे. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. लिबर्टो पांडामनी कमलेन वाकुआमी 75 साल के 75 years old. श्री विजय रामा जो जयसन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज दो बजे इनके पति इंदिरा रामा के घर लिबर्टो पांडामनी कमलेन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2 पी एम. रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज में 52 साल की 52 years old श्रीमती अंजानी गनू. श्रीमती अंजानी गनू पैदाइशी नाम सिनानन जो अंजानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 11 बजे इनके घर रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताब लॉन्च की

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है।
4: बॉम्बे टॉकीज़
5: रेडियो मस्ती।
6: रेडियो मस्ती।

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: 3:15 हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे, कौन सी रिलीज हुई है, कौन सी फ्लॉप हो रही है, कौन सी मूवी टॉप पे चल रही है। तो चलिए भाई, टॉप पे तो हमने आपको बता दिया अभी कौन सी मूवी चल रही है इस समय हनुमान अंश पर। अभी आई है मिर्जापुर, द मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हुई थी और सिर्फ 10 दिनों में 180 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो अगर बात करें तो 200 करोड़ के पार पहुँच चुका है। खास बात यह है कि इस फिल्म ने धमाल 4 और आवारापन 2 जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है और 2026 की जो चौथी सबसे बड़ी हिट बन चुकी है। डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म डायरेक्टर की जो कि गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह की सिनेमाई फीचर जो कहते हैं ना, जब अपना एक सिनेमा से जुड़ा हुआ इंसान होता है उसको एहसास होता है कि भाई उसने क्या मूवी बनाई है। उन्होंने काम किया था राम गोपाल वर्मा के साथ एक एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उन्हें एहसास है कि क्या सीन लेना है, कहाँ से शॉट काटना है, कैसी चीज़ें कितनी छोटे में बहुत अच्छी बन सकती है। तो उन्होंने यही चीज़ को देखते हुए राम गोपाल वर्मा से जो सीखा है उसको पूरा इसके अंदर मतलब यूटिलाइज किया है और ये मूवी जो है मिर्ज़ापुर बहुत ही ज़बरदस्त है। कहते हैं ना कि कभी कभी डायरेक्टर अच्छे जुड़ जाएँ, एक्टर अच्छे हो जाएँ, गाने अच्छे हो जाएँ, तो मूवी की जो स्क्रिप्ट के साथ में बहुत ही बढ़िया जस्टिस हो जाता है और ये जस्टिस रियली में मिर्ज़ापुर ने कर दिखाया है। और जो 200 करोड़ अगर पार कर चुकी है अभी तक, तो बस बहुत ही जल्दी ये बहुत आगे मतलब नंबर 2 के पायदान पर आ जाएगी और जब ये आएगी तो फिर आप देखिएगा कि कैसे लोग थिएटर्स पे भागेंगे। इस टाइम में तो हम ये आपको कहेंगे कि अगर इस मूवी को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इंजॉय कीजिए। इसी मूवी का एक प्यारा सा गाना सांसों की माला।
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: बॉम्बे वाले अगर ना आए तो क्या फायदा. बॉम्बे वाले लेकर आते हैं आपके लिए हर वो लेटेस्ट अपडेट जो कि मूवीज आ रही हैं या टॉप पे जा रही हैं या थोड़ी सी कहते हैं ना ढीली ढीली हो रही हैं. तो कई मूवीज ऐसी होती हैं जो बल्कि हल्की शुरू होती हैं और उसके बाद पटाखा फोड़ती हैं. पर ऐसी मूवी जो आई हनुमान अंश, इसने तो बहुत ही जबरदस्त कमाल कर दिया. उसके बाद आपको सारी मूवीज पता ही हैं, जैसे धुरंधर 2 ने 1150 करोड़ के आसपास कमाया, बॉर्डर 2 ने 330 करोड़ के आसपास कमाया और इस समय हनुमान अंश चल रही है 214 पे और मिर्जापुर द मूवी 184 करोड़ पे. भूत बंगला भी आई हुई है भाई 182 करोड़ का, क्या बात है उसकी. धमाल 4 भाई एक एक करके जो मूवीज आती जा रही हैं उन्होंने अपना, क्योंकि लोगों को तो पसंद आती है ना, स्क्रिप्ट अच्छी हो, एक्टर्स अच्छे हो, डायरेक्टर्स अच्छे हो, प्रोड्यूसर्स अच्छे हो, उन्होंने एक मिलकर एक कोई मूवी बनाई हो और उसका फिर जब रिलीज होती है तो ऐसे इसी तरीके से उनकी कलेक्शन बनती है. क्योंकि करोड़ों पे जा रही है बात तो इसीलिए बन रही है ये करोड़ों पे बात, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है. तो आवारापन 2 जो है 150 करोड़ पर चल रही है, वेलकम टू द जंगल 134 करोड़ के आसपास और कॉकटेल 2 अभी 95 करोड़ के आसपास ही है. ओ रोमियो 72 करोड़ के आसपास चल रही है. तो हम तो यही कहेंगे जो मूवीज़ चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, अगर उसकी स्क्रिप्ट में दम है, गानों में दम है, एक्ट्रेस में दम है तो ज़रूर चलेगी. क्योंकि फैंस फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि हमारे जो एक्टर्स हैं इतनी शिद्दत से काम करते हैं, अपना 100% डालते हैं, पर फिर भी कई फैंस को पसंद आती है वो मूवी, कईयों को नहीं पसंद आती है. पर जिनको पसंद आ रही है उनको हम यही कह रहे हैं कि जो भी मूवीज़ आ रही हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब देखते हैं तो थोड़ा सा मूड भी रिफ्रेश होता है और साथ में एहसास भी होता है कि भाई नया क्या चल रहा है. तो ट्रेंड में जो भी चल रहा है हम आपको बताते चलेंगे. इसके बाद एक और मूवी के बारे में बताएंगे जो लेटेस्ट आने वाली है.
3: More music is in the mix.
0: आज आजादी है. बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
1: रेडियो मस्ती.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: दोस्तों अब बात करते हैं एक और धमाकेदार फिल्म की, दायरा की। ये भी 18 सितंबर को रिलीज हो रही है और इसका मुकाबला सीधे सीधे वाइब से होने वाला है। डायरेक्टर की बात करें तो ये फिल्म डायरेक्टर की जो है मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने तलवार मूवी, राजी और सैम बहादुर जैसी शानदार फिल्में बनाई है। क्या कहानी है इसकी भी, जो थ्रिलर मूवीज पसंद करते हैं उनके लिए तो मतलब एक जैकपॉट होने वाला है, क्योंकि थ्रिलर मूवी बहुत कम कम आती है और जब आती है तो कहते हैं कि जो पोस्टर होता है ना वो फट जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त मूवी के अंदर से एक ऐसी एक्ट्रेस यानी कि करीना कपूर अपने साथ लेकर आ रही हैं थ्रिलर मूवी और उसके अंदर बहुत सारे प्यारे से गाने। तो हम तो गाने ही तो अभी बस नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी रिलीज़ नहीं हुई है, पर आपको अपडेट बस ये दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आने वाली है 18 सितंबर को दायरा मूवी। इन्जॉय कीजिए इस गाने को।

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MPC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MPC विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: North, South, East, or West? Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalit station.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: 3:43 हो चुके हैं दोस्तों और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहते हैं कि बॉम्बे में

यानी कि मुंबई इंडस्ट्री में, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हैवान मूवी की। ये फिल्म 11 सितंबर को रिलीज हुई है। इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल के बाद नजर आ रहे हैं एक साथ। डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिन्होंने भूल भुलैया बनाई थी, भूत बंगला जैसी बहुत बड़ी फिल्म बनाई है। ये जो मूवी आ रही है ना, ये एक क्राइम थ्रिलर है जो मलयालम फिल्म उपम की हिंदी रीमेक है। कहानी एक नज़र से दिव्यांग जैसे कि जो सैफ हैं वो देख नहीं सकते हैं, और एक बच्चे की जान बचाने के लिए साइको किलर परशुराम यानी कि जो अक्षय कुमार से भिड़ने वाले हैं, और मोहन लाल का भी कैमियो है। तो क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन मिला जुला है लोगों को, अक्षय जो विलन के रूप में आ रहे हैं और सैफ जो है एक्टिंग की सराहना बहुत ही सिंपल एक जैसे नॉर्मल एक पर्सन होता है उसकी जैसे है। तो दोनों, क्योंकि सैफ आपने पीछे देखा होगा कि वो एक बार की नज़र में कह रहे थे कि भई हमने ऐसी मूवी में काम करना है जिसके अंदर वो एक विलन के रूप में आए, और इस मूवी में वो सिंपल आ रहे हैं। और अक्षय कुमार जो कि हमेशा रोमांटिक या कोई एक्शन मूवी में आते हैं, और इस बार वो विलन की नज़र से देख सकेंगे हम उनको। तो हम तो ये कहेंगे कि रन टाइम जो है उनका जो स्क्रीन प्ले है लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। बॉक्स ऑफिस में फिर भी वो काम कर रहा है, पर उसकी जो शुरुआत है थोड़ी सी धीमे है। पहले दिन तो सिर्फ 3 करोड़ उन्होंने कमाए, 3 दिनों में 7.15 करोड़, और अब भी जो बजट चल रहा है जो कि आंकड़े हैं उन्होंने 115 करोड़ का बजट लगा रखा है उसमें, और लोगों को पसंद को देखते हुए थोड़ा सा ना उम्मीदी नज़र आ रही है। पर फिर भी देखते हैं, अभी टाइम है, गणेश चतुर्थी चल रही है, तो सब लोग अभी इंडस्ट्री बॉलीवुड वाले हो या कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड हो, सब अपने अपने घरों में बिजी हैं, तो बस हो सकता है कि 1-2 दिन में ये पिकअप पकड़े और फिर पता चले कि हैवान मूवी में क्या नया खास होने वाला है। तो इन्जॉय कीजिए गानों को।

और देखते ही देखते शाम के 4 बजने वाले हैं और बॉम्बे टॉकीज में आप सबसे इजाजत लेती हूँ बॉलीवुड की बातें थोड़ी सी गॉसिप और ढेर सारे गानों के साथ। मैं थी आपके साथ पूनम। इस मेरे बाद आप बुलेटिन सुन पाएंगे इंग्लिश न्यूज़, और उसके बाद आपको साथ मिलने जा रहा है गिनीशा का।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
5: शाम के 4 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
6: नमस्कार आदाब। आज सिंगापुर की फौज ताकत के पुराने जनरल ओंग बुंग हुई ने प्रधानमंत्री से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पहल के सिलसिले में सिंगापुर की महारत के अलावा नौजवानों में अंकित वतन परस्ती के जज्बात, मजबूती और मानसिक तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। आज सुबह सऊदी अरब में हज और उमरा अदा करने का मुद्दा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सऊदी हज और उमरा मंत्री के दरमियानी गुफ्तगू का मरकज रहा। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल राबिया मुर्शिद के औपचारिक दौरे पर हैं। उन्होंने मुर्शिदों के लिए हज की अदायगी को आसान बनाने की बात भी की। सरकार ने वीज़ा की तादाद को बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी 1500 से बढ़ाकर 2500 वीज़ा तक कराना। मजहबी सतह पर मुर्शिद और सऊदी अरब के बीच सहयोग पर भी बात की गई। मुर्शिद की मस्जिदों के लिए सऊदी सुल्तनत $6 मिलियन की फिनांसिंग देगी। बहुत जल्द इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। हिंदी केवल शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। आज 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक अस्तित्व को याद करने का अवसर है। भारत से लेकर मॉरिशस और दुनिया के कई देशों तक हिंदी ने अपनी जड़ों को संभालते हुए बदलते समय के साथ खुद को नई पहचान दी। महात्मा गांधी संस्थान मोका के तृतीय शिक्षा विभाग के छात्र हिंदी सप्ताह के दौरान कई गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। गजानन भगवान का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हिंदू धर्म में गणेश जी प्रथम पूज्य है और जिनके पधारने से ढेर सारी खुशियां आती हैं। वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं, समस्याएं, दुख दर्द ले जाने के लिए आए हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज विनायक देवता की आराधना और आरती की जा रही है। कल विधि अनुसार उनकी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। मुंबई भारत में भी 11 दिनों के जश्न शुरू हो गए हैं। आज गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। गए वीकेंड के दौरान सीरिया भर में प्रदर्शन किए गए ईंधन की कीमतों में लाई गई बढ़ोतरी की वजह से लोग सड़क पर उतर आए हैं। डीजल का दाम 40% से बढ़ा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। टुकोलेन लारू कुवों क्यूबिक में 85 साल की 85 years old श्रीमती बागमत उकोई जो चिफिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके बेटे विकास मंगल के घर टुको लेन लारू कुवों क्यूबिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
7: NBC Radio.TV. The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: Well guys, check your time. Studio ki ghadi mein 4:10 ho chuke hain aur already we have a kick-started this beautiful show. Your Raftaar Vibes aapke aur hamare beech mein on RM2 Radio Masti. Ji haan dosto, वैसे कल है वो खूबसूरत दिन जब हमारे जो बप्पा जी हैं हमारे घर आएंगे और घर और दिलों में सब पर राज करेंगे। गणेश चतुर्थी की तैयारियां तो फुल ऑन चल रही हैं और घर सज गई हैं, मोदक बन रहे हैं और हर तरफ बस बप्पा के आने की खुशी है। तो आज रफ्तार वाइब्स में म्यूजिक के साथ साथ फील कीजिए वही फस्ती वाली एनर्जी जो हम लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए, वही पॉजिटिविटी और बप्पा की ब्लेसिंग्स। सो सब मिलके बोले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। सो माय डियर एंड लवली पीपल, रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइड्स लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम लवली खूबसूरत बॉलीवुड गाने। एंड यस, यू गोना हैव सम लवली लवली बातें जो हम करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल के लिए स्वैग से करेंगे आपका स्वागत ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
2: Message, eh? You ready? Let's go.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: Check your time, it's already 4:40, and of course it's time for some latest sports news. Hamare sports guru ke saath Arvind ji, good afternoon.
4: Good afternoon aapko Gnisha, good afternoon sabhi logon ko. So kal ki baat kare,
3: kar lijiye.
4: Nahi Gnisha abhi, she's preparing for the Ganesh Chaturthi. To aaj बख्श दिया बट द टॉक ऑफ द टाउन अभी आ रहे थे तो कैंटीन में इसी बारे में चर्चा हो रही थी. यूनाइटेड वाले चुप हैं, अभी विशाल भी चुप था, उसको काफी लोग चिढ़ा रहे थे कि क्या हुआ विशाल, क्या हुआ. सो एक्चुअली द टॉक ऑफ द टाउन है क्या वो गोल था या फिर ऑफसाइड था. अब अनेक थ्योरी हैं इसमें कि फर्नांडेज वाज ऑफसाइड और भले ही उसने गेंद को छुआ नहीं बट इंटरवीन कर रहा था उस एक्शन में जिससे कि गोलकीपर लामेंस थोड़ा घबरा गया. और जबकि उधर जो गोल स्कोर होता है अर्लिंग हालैंड, ही वाज नॉट ऑफसाइड. तो रेफरी चीफ रेफरी ग्रुप बता रहे हैं कि दे गॉट इट रॉन्ग एनीवे. लेकिन 10 खिलाड़ियों के साथ मैनचेस्टर सिटी 10 खिलाड़ियों के साथ था, इसका फायदा नहीं उठा पाया मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब इधर एक रेड कार्ड जो दिया गया फुडेन को, उसको भी लेकर कंट्रोवर्सी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे पहले ब्रूनो फर्नांडेज ने उसे लात मारा, एक बार नहीं दो बार, लेकिन जो उसका रिएक्शन रहा फोडेन का वो रेफरी देखकर उसे रेड कार्ड दे देता है. सो प्लेंटी ऑफ कंट्रोवर्सीज. और वैसे इट्स अ डर्बी, मैनचेस्टर डर्बी में ऐसी बातें होती रहती हैं. सो इस पासों अब देखते हैं आगे क्या होगा. आज लीड्स यूनाइटेड का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से है. सो लीड्स यूनाइटेड डूइंग क्वाइट वेल इन दिनों, अभी 3 मैच में उसके पास 5 अंक हैं. सो आज अगर जीतेगा तो दे कैन क्लाइम टू 8 पॉइंट्स थर्ड पोजीशन. जबकि न्यूकासल यूनाइटेड, लेट मी चेक, वो भी 10th पोजीशन पे हैं, 5 अंक उसके पास भी है. सो काफ़ी बैलेंस्ड मैच होगा लीड्स और न्यूकासल यूनाइटेड वाला. ये होम एडवांटेज लीड्स के हक में आ सकता है इस मैच में. तो प्रीमियर लीग के लिए आज ये मैच, और बाकी लीग में भी कुछ मैच हैं, जैसे स्पेन के ला लीगा में विलारियल अगेंस्ट रियल बेटिस, इटली के सेरी आ में कुमो अगेंस्ट पार्मा, टोरिनो रोमा का स्वागत करेगा इंटर मिलान उडिनीजे. इंटर मिलान और रोमा, इन दोनों टीमों की अभी तक हार नहीं हुई है. कोमो ऑल्सो बहुत अच्छा खेल रहा है कोमो, आज अभी उसके पास 7 अंक, 6 पोजीशन पे हैं. सो लाजियो लीडिंग विथ 10 पॉइंट्स, रोमा के पास है 9 अंक, इंटर मिलान के पास 9 अंक, कागलियारी के पास 9 अंक. लाजियो ने एक मैच ज़्यादा खेला है और बाकी चैंपियनशिप में भी आज मैच खेले जाएंगे. कल इंग्लैंड के लीग कप के थर्ड राउंड के मैच होंगे, इनमें लिवरपूल टोटनहम हॉटस्पर का स्वागत करेगा. और कोच इराओला ने आज बताया कि कुछ खिलाड़ियों को आराम पे रखा जाएगा, मोहम्मद अशविली को गोलकीपर बनाया जाएगा. बाकी मैच पीटरबोरो बार्न्सले, वेस्ट हैम यूनाइटेड फुलहम, इप्सविच आर्सेनल, रेडिंग ब्रेंटफोर्ड. तो ये कॉम्पिटिशन जो अब जो बड़ी टीमें हैं दे आर कमिंग देयर. फिर वेंसडे मैच एवर्टन वुल्व्स, फ्लीटवुड शेफील्ड यूनाइटेड, कोवेंट्री एस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन के खिलाफ खेलेगा वेंसडे लेट मैच. और यूईएफए यूरोपा कप के लीग स्टेज के मैच भी कल और परसों खेले जाएंगे, पर वेंसडे को और थर्सडे को भी. इनमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टीमें हैं जैसे एसी मिलान, बेनफिका. इस पर ज़्यादा जानकारियां, ज़्यादा डिटेल्स आपको देते रहेंगे समय समय पर. क्रिकेट कल एमबीसी रेडियो पर, यहाँ पर रेडियो मस्ती पर आप लोगों ने सुना द ग्रैंड फिएस्टा, द ग्रैंड फाइनल जो लगा. और कैंपस अब्रॉड लायंस जीत गए कॉन्टिनेंटल चीताज के खिलाफ. इट वाज अ ग्रेट मैच, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे दोनों टीमों में. और उधर टीम इंडिया चैंपियन T20 एशिया कप में, और टीम इंडिया जो T20 सीरीज शुरू हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें भी उसकी जीत हुई. और वीकेंड के दौरान टेनिस में भी काफ़ी कुछ हुआ, आपको बताएं वेरेव US ओपन जीत पाया फाइनली. सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. घबराने की कोशिश नहीं, कोई बात नहीं, गणपति बाबा हैं,
3: मोरिया मोरिया, कोई बात नहीं,
4: सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं, सभी चिंताओं को दूर कर

0: देते हैं।
1: और आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर वो भी दूर हो जाएगी, फिकर मत करना।
0: हम देखिए आज हमने कुछ बोला नहीं, हम
1: आप समझते हो कि मैं अभी दूसरे मूड में हूँ, हम गणेश चतुर्थी के वाइब्स में हैं, तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर से बात करेंगे ऑन मंडे सेम टाइम, ठीक है? चलिए।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।

0: 2019 रेडियो मस्ती
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: RM2 खूबसूरत गानों का सिलसिला बस यूं ही चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में आना RM2 रेडियो मस्ती। थैंक यू जी साथ देने के लिए फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। 4:48 हो चुके

0: मंडे 14 सितंबर 2026 आज बहुत ही खास दिन है मेरी जान, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे है जो हमारे बप्पा के भक्त है ना, उनके दिलों में इतनी खुशियां चल रही है, जैसे बोलते हैं ना कि दिल में लड्डू फूट रही है, क्योंकि बप्पा किसी के घर में आ चुके हैं और शायद किसी के घर को शाम को आना है। इतने सारे खुशियां लेकर आए हैं हमारे लिए, क्या बताऊं आपको, बहुत सारे लोग जो है इतने ज्यादा शिद्दत से इतने प्यार से इंतजार में थे कि कब बप्पा आएंगे, अब आ ही गए हैं और बहुत सारी तैयारियां चल रही है। बिल्कुल जी, ढोल की बीट होंगे, मोदक की स्वीटनेस, डेकोरेशन की शाइन और दिल में बप्पा की जो एनलेस प्यार है ना उनके भक्तों के लिए, तो बस हम हमेशा कहेंगे आपको कि फिलहाल के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती अगर आप हमें सुन रहे हैं कि दिल में हमेशा श्रद्धा लेके चलो, और दिल में क्या हम तो बोलते हैं बड़े जोर जोर से हमारे साथ आप भी बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल जी, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए, अपनी वाइब्स हाई रखो और सेलिब्रेट करो पॉजिटिवली के साथ। हम है कि निशा जो साथ दे रहे हैं और कहना चाहेंगे बप्पा आ गए हैं और इस बार खुशियां डबल होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए।
1: RM2 रेडियो मस्ती

In case अगर किसी ने आपको I love you नहीं कहा है तो of course I'm here just to tell you how much I love you guys. Thank you so much and बस यूं ही साथ देते रहना on our Rantu Radio Messi. Check your time guys. 5:10 हो चुके हैं. Wishing all of you a very good afternoon. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम and welcome in the second hour of this beautiful show. That's your Raftar Vibes. Your filmy rides जहां पे हम खूबसूरत गाने लेकर आए हैं specially for you our special listeners. And the जी हाँ 5499194 पर you can start sending me your dedications. Do let me know क्या चल रहा है. अगर गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही हैं आपके घर पे, मोदक बन रहे हैं, कुछ मिठाई लड्डू शड्डू बन रही है, सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. टू ऑल दोज जो अभी काम से निकल चुके हैं, शायद बस में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, टैक्सी गाड़ी में बैठो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन 5499294.

0: रेडियो मस्ती।
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन जी है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसा कई गो ऑप्शन बा जोन बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्टी करे जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो ऐसा लास्योरेंस जोन तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम और शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
4: Enzo, mo bou arrange mo la case. Enzo, mo bou faire innovation. Sa zoula, c'est côte métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7-6 apprises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et crobinetterie. Septembre promo, 7 promos, côte métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
5: RM2
0: Radio Musty.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: You're into
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: बिल्कुल जी, जस्ट फील द मसी एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक जो आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन आरएमटी रेडियो मैसेज में निशान द माइक और 5:26 हो चुके हैं. एंड यस, फिलहाल के लिए लेट्स चेक इट आउट योर अदर ओकेशंस, किसने किसको याद किया है. एंड आई जस्ट वांट टू डेडिकेट ये अगला गाना स्पेशली फॉर यू रेबिका एंड फॉर अर्शद जो साथ दे रही हैं. एंड स्पेशली आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन फॉर यू माय डियर. किसी ने लिखा है आज कि मेल आउट गणेशा, रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल फ्रॉम योर पाथ. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम दागन श्वेता, रविश, प्रीशा, लवेश एंड अपर फैमिलीज फ्रॉम रोशनो जो साथ दे रहे हैं. हे गिनी, वी आर प्रिपेयरिंग गणेश पूजन जागरण इन मंदिर, बप्पा का कोई गाना फ्रॉम मूवी बैंजो, हनु हमने ऑलरेडी चला दिया. एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया. सो चलिए ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल दोज जो साथ दे रहे हैं राइट नाउ ऑन रेडियो मैसेज, टू ऑल दोज जो अभी निकल चुके हैं काम से और सोच में पड़ गए हैं कि कब घर पहुंचेंगे. थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड जस्ट ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, धीरे धीरे हौले हौले आप पहुंच जाओगे.

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

0: Well guys, 5:42 minutes ho chuke hain, you are listening to you, your number one radio station. Ji haan, that's Radio Masiyan. That's your Rough Town Vibes with me. Aaj ek Nisha on the mic, waise mere dost. कल जो है गणेश चतुर्थी के विसर्जन होंगे और उसके लिए लुक कंफर्टेबल होना चाहिए और फेस्टिव और फोटोज भी अच्छे निकलने चाहिए और फ्रेंडली रखो. सो आई एम गोना गिव यू सम लिटिल फैशन टिप्स अबाउट दैट. सो गर्ल्स, आप लाइट साड़ी पहन सकते हो, कुर्ती, प्लाजो, अनारकली या इंडो वेस्टर्न सेट या इवन पेसल येलो, पिंक, ग्रीन या ऑरेंज शेड्स फेस्टिव लहंगे आप पहन सकते हो. और लड़के जो होते हैं कुर्ता पजामा, कुर्ता विद जीन्स या सिंपल नेहरू जैकेट, वाइट एंड सैफ्रन येलो कॉम्बो ऑलवेज लुक्स गुड एंड इट वर्क्स. और विसर्जन फ्रेंडली यानी कि कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो और ज्यादा वॉकिंग, भीड़ और वाटर एक्सपोजर हो सकता है, सो डेलिकेट हील्स अवॉइड करना बेटर है. और फैब्रिक में आप पहन सकते हैं कॉटन, कॉटन लिनन एंड लाइट फैब्रिक्स चूज करो. हैवी सिल्क एम्ब्रॉयडरी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा कल के लिए और ऑफकोर्स एक्सेसरीज के बिना तो आपके लुक इनकम्प्लीट रहेगा. सो मिनिमल रखो और झुमकास, बैंकल्स, स्मॉल बिंदी एंड या बस ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ें पहनो एंड लुक गुड. सो प्रैक्टिकल टिप जो है आपके लिए हमने आपको दे दिया है. सो जस्ट अप्लाई इट एंड एंजॉय योर विसर्जन टुमारो एंड बाय फॉलोइंग आवर फैशन टिप्स.
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.

0: आदाब समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के का समाचार बुलेटिन पेश है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विघ्नों का नाश करने वाले देवता गणेश जी पधार चुके हैं। मुर्शिद में आज उत्साह का माहौल छाया हुआ है। प्रार्थनाएं, आरतियां, विधियां और मनोकामनाएं, आज बप्पा का गुणगान जगह जगह पर। आज हिंदी भाषा के प्रेमियों के लिए प्रतीकात्मक दिन हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी संस्थान मोका में गतिविधियां। आज सिंगापुर की फौज ताकत के पुराने जनरल ओंग बुंग हुई ने प्रधानमंत्री से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के सिलसिले में हुई बातचीत। आज ही सऊदी अरब में हज और उमरा अदा करने का मुद्दा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सऊदी हज और उमरा मंत्री के दरमियानी गुफ्तगू का मरकज रहा। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अराबिया मुर्शिद के औपचारिक दौरे पर। सोशल मीडिया पर मलागासी उद्योगपति मामी गवातो मांग से जुड़ी बातों के पोस्ट के बारे में जानकर जॉन कॉलेरीजे आज सेंट्रल सीआईडी गए ताकि इस मामले में एक जांच शुरू की जाए। और सीरिया में ईंधन की कीमत 40% से बढ़ाई गई है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नमस्कार और आदाब। गजानन भगवान का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हिंदू धर्म में गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, जिनके पधारने से ढेर सारी खुशियां आती हैं। वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं, समस्याएं, दुख दर्द ले जाने के लिए आए हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज विनायक देवता की आराधना और आरती की जा रही है। आज पारंपरिक नृत्य झांकरी की जा रही है। समस्त हिंदू परिवार, खासतौर पर मराठी समुदाय के लोग पारंपरिक लिबासों में मलबूस होकर महाराष्ट्र की परंपराएं और विधियां निभा रहे हैं। विधिमा सिबुरन दागोचिया के रावजी परिवार के यहाँ है।
1: जय श्री गणेशा, हे रक्षण करता।
2: गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, उल्लास और नई शुरुआत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों के लिए बप्पा अपने भक्तों के घर पधारते हैं और उनके सारे संकट, बाधाएं और दुख हर देते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, गणपति बप्पा मोरिया की जयकारों और मोदक की मीठी खुशबू से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। और ऐसा ही वातावरण रावजी परिवार के यहाँ छाया हुआ है, जो आज 50वें साल के लिए ये पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मना रहा है। और अभी हमारे साथ लक्ष्मण रावजी हैं, जो हमें बताएंगे कि इन 50 सालों में क्या क्या बदलाव नजर आया और वो कैसे गणेश चतुर्थी मना रहे हैं।
3: जब वे लोग अपनी मूर्ति को बना रहे थे, जब ज्यादा लोग बना रहे थे तो किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को देखने नहीं देते थे। जब तक की स्थापना नहीं होगी तो किसी को देखना नहीं है, वहाँ पर जाना मना है। जहाँ पर दादा मूर्ति बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि अब बचपन बच्चे लोग और लोग बनाने लगे। पहले मैं कहूँगा कि सिर्फ एक गांव में हो सकता एक व्यक्ति गणपति बना रहे थे, अब नहीं, अब घर घर में कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है, घर में यह विधि होने लगी है। पहले मैं कहूँगा कि जब भी झांकरी की नृत्य होती थी तो अपने सब लोग जो है, दादा दादी बुजुर्ग छोटा बड़े सब मिल करके वहाँ नृत्य करते थे, सीख रहे थे, सिखा रहे थे बच्चों को। अब जो है जवान लोग जब हो ही गए हैं तो फिर को अलग करके अपना ग्रुप बना लेते हैं।
2: तो आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और बहुत से परिवार कल विसर्जन विधि में भाग लेंगे।
0: सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मुंबई भारत में भी 11 दिनों के जश्न शुरू हो गए हैं। आज गणेश जी की मूर्तियों का की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न की गई। लाल बोगचा राजा और अन्य स्थलों पर विशाल पंडाल लगाए गए हैं। भारत में ये पर्व कई दिनों तक चलता है। आस्था को बिंचितामन।
4: भारत में आज से गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया है। भगवान गणेश के स्वागत में शहरों से लेकर गांवों तक भक्ति और उल्लास का वातावरण है। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख की पवित्र ध्वनि और गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के बीच श्रद्धालु विघ्नहर्ता का अभिनंदन कर रहे हैं। गणेश उत्सव का सबसे भव्य दृश्य लाल बाग चौराहा

0: के दरबार में दिखाई दे रहा है। इस प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश उत्सव का ये 93वां वर्ष है। भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लालबाग चराजा को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले गणपति के रूप में पूजा जाता है। भारत के अलग अलग भागों में भी गणेश उत्सव के अनेक मनमोहक रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं भव्य मंडपों में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो कहीं फूलों, दीपों और रंगोली से उनका श्रृंगार किया गया है। मंदिरों और सार्वजनिक मंडपों में भी आरती, भजन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भगवान गणेश ज्ञान, विवेक और शुभ आरंभ के प्रतीक है। उनका ये उत्सव केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि परिवारों और समाज को जोड़ने वाला पर्व भी है। आने वाले दिनों में भक्ति का ये क्रम जारी रहेगा और अनंत चतुर्दशी पर श्रद्धालु नम आंखों से बप्पा को विदाई देंगे, इस प्रार्थना के साथ कि वे अगले वर्ष फिर आएं।
1: मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस मराठी स्पीकिंग यूनियन, मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट और बुआशेरी घोंबुआ मराठी मंडली के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम मुख्य मेहमान की हैसियत से विधियों में भाग ले रहे हैं। वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और कल राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ गणेश उत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर्व के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कई जगहों में कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस पर ज्यादा जानकारी फेडरेशन के सचिव नवीन मंतादिन दे रहे हैं।
2: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन सभी हिंदू परिवारों को सूचित करना चाहता है कि हमारे रजिस्टर्ड मंदिरों में गणेश स्थापना और पूजा सोमवार 14 सितंबर को शुरू हो चुकी है और विसर्जन कल मंगलवार 15 सितंबर को किया जाएगा। तो गणेश चतुर्थी विसर्जन के लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन ने कुछ गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की टीम 7 जगहों में यानी कि 7 समुद्र तटों पर उपस्थित होंगे। बेलमा पब्लिक बीच, फिकाफ्लाक नियर शिव सागर मंदिर, ऑसलारे नियर यूथ सेंटर, मोशवाजी पब्लिक बीच, लुबुशों पब्लिक बीच, रोशनो पब्लिक बीच, बैदेदाम। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन सभी हिंदू परिवारों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट दुविधाएं हैं, वो सब दूर हों। गणेश भगवान समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य दें, यही हम आशा करते हैं।
1: हिंदी केवल शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। आज 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक अस्तित्व को याद करने का अवसर है। भारत से लेकर मॉरिशस और दुनिया के कई देशों तक हिंदी ने अपनी जड़ों को संभालते हुए बदलते समय के साथ खुद को नई पहचान दी। महात्मा गांधी संस्थान मोका के तृतीय शिक्षा विभाग के छात्र भी हिंदी सप्ताह के दौरान कई गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जिनमें अशुवाक प्रतियोगिता शामिल है। पूजा सुकालू।
3: हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, विचारों और संस्कृति को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी का अस्तित्व उसकी किताबों में ही नहीं बल्कि लोगों की बातचीत, गीतों, कहानियों, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी में है। यही वजह है कि हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, भावनाओं और सामाजिक पहचान से जुड़ी एक जीवंत परंपरा के रूप में देखा जाता है। हिंदी हमारी आवाज, हमारी विरासत और हमारी पहचान है।
4: हम विकल्पों की एक लंबी सूची दे देते हैं। मैं PGCE करूंगी, मैं AI में कोर्स करूंगी, मैं ग्राफिक डिजाइन करूंगी, या फिर सब कुछ छोड़कर अपने लिए YouTube चैनल खोलूंगी।
3: स्रोत लेख, वाग्मिता, कविता, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, यहाँ तक की अंताक्षरी।
5: हिंदी सप्ताह हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ मनाया जाता है और प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे मंच पर बोलना, थोड़ा डर जो होता है वो भागा और हिंदी भाषा में हम और भी संलग्न होते हैं। संलग्न होने के साथ साथ हमारी भाषा में जो

0: त्रुटि या फिर गलतियां होती हैं वो भी कम होते जाते हैं।
1: हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है।
2: आशुवाद प्रतियोगिता के माध्यम से हम बच्चों के वाचन कौशल का पता लगाते हैं और हमें पता चलता है कि वे हिंदी में कहाँ तक बोल सकते हैं। इन्हीं प्रतियोगिताओं के माध्यम से पता चलता है कि भाषा का प्रयोग कहाँ तक हो रहा है। अगर प्रतियोगिता नहीं होगी तो बहुत कम पता चलेगा कि विद्यार्थी जो हैं कहाँ तक हिंदी बोल पा रहे हैं, कहाँ तक अच्छी हिंदी का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो उनका प्रतियोगिताओं में भाग लेना और मंच पर आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अपनी भाषा को उत्कृष्ट हिंदी भाषा बनाते हुए उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा करके हमें गर्व दिलाते हैं।
1: हिंदी भाषा को जीवित रखने के उद्देश्य से ही हिंदी सप्ताह के आखिरी दिन युवाज नामक विशेष पत्रिका के लोकार्पण का आयोजन होता है। इसके लिए इस पत्रिका की तैयारी में न केवल वर्तमान बल्कि पूर्व छात्र व छात्राओं की भागीदारी भी होती है।
3: युवाज एक ऐसी टोली है जो हिंदी सप्ताह के दौरान किए जा रहे गतिविधियों को कवर करके उसको शब्दबद्ध बना के एक पत्रिका युवाज पत्रिका में प्रकाशित करता है। इससे न केवल आपके व्यक्तित्व में बल्कि आपके भाषा कौशल में और आपके रचनात्मकता में बहुत विकास आता है।
1: हिंदी को शिक्षा में अपनाने से छात्र अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, पारंपरिक साहित्य, लोक कथाएं और इतिहास को समझ सकते हैं जो हिंदी में लिखे गए हैं और अपने धरोहर के प्रति गहरी सराहना कर सकते हैं।
4: आज सिंगापुर की फौज ताकत के पुराने जनरल ओंग बुंग हुई ने प्रधानमंत्री से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पहल के सिलसिले में सिंगापुर की महारत के अलावा नौजवानों में अंकित वतन परस्ती के जज्बात, मजबूती और मानसिक तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। अनाबेल वुलबेया, गीता सुनारान।
5: 12 साल बाद सिंगापुर के पूर्व ब्रिगेडियर ओंग बुन हुई ने एक बार फिर डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। ये रस्मी मुलाकात नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के तहत की गई। इसका मकसद युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी और अच्छे मूल्यों को मजबूत करना और उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
6: I feel that I very much would like to fulfill the role of being an encourager.
5: मैं सबसे पहले प्रोत्साहन देने वाले की भूमिका निभा रहा हूं, विचारों और अमूर्त मूल्यों को आगे रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला जो बहुत ही आदरणीय है, उनसे बहुत कुछ सीखा। वे नौजवान मॉरिशनों को जागरूक करना, उनमें देशभक्ति और मानसिक शक्ति को मजबूत करना चाहती हैं।
6: अवेयरनेस ऑफ द यूथ 14 इयर्स ओल्ड अबाउट मॉरिशस बट टू इंडीड रीइंफोर्स देयर पेट्रियोटिज्म, their resilience, their mental recognition.
5: इस सप्ताह ओंग बुन हुई चुने गए लगभग 20 लीडरों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन में भाग लेंगे। इसके बाद ये लीडर्स इस पहल के तहत युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे।
4: आज सुबह सऊदी अरब में हज और उमरा अदा करने का मुद्दा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सऊदी हज और उमरा मंत्री के दरमियानी गुफ्तगू का मरकज रहा। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अरबिया मुशरस के औपचारिक दौरे पर हैं। उन्होंने मुशरनों के लिए हज की अदायगी को आसान बनाने की बात भी की। सरकार ने वीज़ा की तादाद को बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी 1500 से बढ़ाकर 2500 तक करना। मजहबी सतह पर मुशरस और सऊदी अरब के बीच सहयोग पर भी बात की गई। मुशरस की मस्जिदों के लिए सऊदी सुल्तनत $6 मिलियन की फिनांसिंग देगी बहुत जल्द। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी हज मंत्री ने एबन में मंत्री शकील मोहम्मद से भी रस्मी मुलाकात की। इसके बाद इस्लामी सकाफती सेंटर पोर्टलुई में एक समारोह लगाया गया। हज के अहतमाम और मुर्शन हाजियों को दी जा रही सहूलतों पर बात हुई। डॉक्टर तौफीक अल राबिया ने ऐलान किया कि आईसीसी को उमरा की सेवाएं देने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती हैं। अब्दुल्ला की असीता रघु।
7: मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत करते हुए सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने एबन में मंत्री शकील मोहम्मद के साथ मुलाकात की। बैठक में हज यात्रा मुख्य मुद्दा रहा, खासतौर पर मॉरिशस के हज यात्रियों की तैयारी और उनकी बेहतर देखभाल के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा हुई। इसके बाद दोनों मंत्री पोर्टलुई स्थित इस्लामिक कल्चर सेंटर पहुँचे। वहाँ सऊदी

0: मंत्री ने संबोधन दिया और संस्थान के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। सऊदी अरब के हज मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया कहती हैं, हमारा मॉरिशस आने का एक मकसद है आपको सुनना। हम जानना चाहते हैं क्या बेहतर चल रहा है और कितना और बेहतर कर सकती हैं। मुझे खुशी हो रहा है ये ऐलान करते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने इस्लामिक कल्चर सेंटर द्वारा अन्य सेवाएं प्रदान करने पर मंजूरी दे दी है। सऊदी मंत्री की इस यात्रा का स्वागत करते हुए मंत्री शकील मोहम्मद ने मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मॉरिशस में हज के आयोजन में किए जा रहे नए बदलावों का भी जिक्र किया। मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं, कई परियोजनाओं पर चर्चा करने का मौका मिला हज के मुद्दे पर तथा भविष्य में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हाजियों की सेवा कर पाएंगे। ये मॉरिशस और इलाके के हाजियों सभी के लिए होगा। मैंने ये भी ऐलान किया है कि जल्द ही हम हमारे नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल को अंतिम रूप देने वाले हैं, जिससे हज के दस्तावेजों का देखरेख कर पाएंगे। सऊदी मंत्री की ये यात्रा मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम है, खास तौर पर हज के क्षेत्र में, जिसका मकसद मॉरिशस के यात्रियों के लिए हज यात्रा के अनुभव और उनकी बेहतर देखभाल को लगातार बेहतर बनाना है।
1: स्टेट हाउस रेजवी में सोमदत्त सुबुरन ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन के सदस्य की हैसियत से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और ईओसी की अध्यक्ष कारोलिन देवो दुमारिनी के सामने शपथ ली। सोमदत्त सुबुरन की कार्यावधि 4 सालों की रहेगी। सोशल मीडिया पर मलागासी उद्योगपति मामी गवातुमांग से जुड़ी बातों के एक पोस्ट के बारे में जानकर जॉन कॉल एलिजे आज सेंट्रल सीआईडी गए ताकि इस मामले में एक जांच शुरू की जाए। उनके वकील अकील बिसेसो के मुताबिक प्रधानमंत्री दफ्तर के पुराने सलाहकार ने जांचकर्ताओं को अपना मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव दिया जिनमें उनकी शिकायत से जुड़े पहलू शामिल हैं। आज सुबह सुप्रीम अदालत के एफसी डिवीजन में पहले मुकदमे शुरू हो गए हैं। 3 मुख्य मामलों पर बहसें शुरू हुई। रिवॉर्ड मनी इकोडिया पर्क एसोसिएशन और ईडीबी के स्तर पर पक्षपात के मामले जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब के सामने किए जा रहे हैं। गए वीकेंड के दौरान सीरिया भर में प्रदर्शन किए गए ईंधन की कीमतों में लाई गई बढ़ोतरी की वजह से लोगों में गुस्सा पैदा हो गया है। डीजल का दाम 40% से बढ़ा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मैक्रोन ने कहा कि वे अपने पड़ोसी देश पर निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ईयू का सदस्य देश बनना चाहता है।

और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत मॉरिशस में कल सुबह 4 बजे से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी होगी और पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को आज रात से प्रभावित करेंगे। एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से ठंड भी महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। कल हवाई ढलानों पर हल्की वर्षा होगी और आमतौर पर घने बादल होंगे और जहां तक तापमान की बात है तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हवा दक्षिण की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16 अधिकतम 17 से 20, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 21 अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। याद रहे ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की जाएगी और इसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के उतरने का खतरा है। इसी वजह से सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। कल सुबह 6:06 पर सूरज उगेगा।

खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नुरताली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। Nissan a venu circonstance simple. Il y a 67 years old. Shri Mohit Gudaw, जो फीस टिपिया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है और थी कल ढाई बजे इनकी पत्नी निर्मला गुडो के घर निसान एवेन्यू सर्कमस्टांस सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सर्कमस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रिब्यूशे में 80 साल की 80 years old श्रीमती रागामा वेंकटासामी, श्रीमती रागामा वेंकटासामी पैदाइशी नाम वेंकामा जो गियाना के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है और थी कल डेढ़ बजे के घर रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 1:30 PM। चुकोलेन La rue Couvent, qui est plus de 85 ans, qui est 5 years old. Shrimati Bagmat Ukoi, jo chifia ke naam se zyada jani jati thi, ki mrityu ho gayi hai, aur thi aaj 11 baje, inke bete Vikash Mangal ke ghar, Tukulen, La rue Couvent, qui se utha kar antim sanskar ke liye, Ale Brayan, ki shamshan bhoomi le jai jayegi, cremation tomorrow at 11 AM. रॉयल रोड विचियम मिल्ट्रियोले में 92 साल की 92 years old मोहतरमा बीबी हुसैन भी सदाली, मोहतरमा बीबी हुसैन भी सदाली जो जवानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है और थी आज सवा छह बजे इनकी बेटी सबरुन जाफर के घर रॉयल रोड विचियम मिल्ट्रियोले से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंदे पापाई का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। रामफल लेन गेंडा रोड मेलरोज में 52 साल की 52 years old श्रीमती अंजानी गनू पैदाइशी नाम सिनानन जो अंजानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है और थी कल 11 बजे इनके घर रामफल लेन गेंडा रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। लिंगबेटो पंडामनिकम लेन वाकवा में 75 साल के 75 years old श्री विजय रामा जो जेसन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है और थे कल दो बजे इनकी पत्नी इंदिरा रामा के घर लिबेटो पंडामनिकम लेन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थमा मिल की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रॉयल रोड बुआरूज पंपलमूस में 80 साल के 80 years old श्री बीडी नन हरदयाल जी तोरा, श्री बीडी नन हरदयाल जी तोरा जो सुखदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है और थी कल सपहर तीन बजे के घर रॉयल रोड बुआरूज पंपलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंपलमूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OM2 Well guys, check your time. 6:28 हो चुके हैं. Welcome in the third hour of this beautiful show, Your Raftar Vibes with me, Ganesha on Radio Masti.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: RM2 Radio Musti.

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Balalut station.

0: दो तीन चार गणपति का जय जयकार। एंड हम तो यही चाहते हैं कि गणपति बप्पा हर घरों में वास करे और जब भी वो आए तो सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि को लेकर आए। और मुझे पता है कि जब भी गणपति बप्पा आते हैं घर में तो घर में उल्लास सुख शांति का माहौल बना रहता है, लेकिन जब बप्पा जाते हैं तो जाते जाते आंसू दे जाते हैं। एंड मुझे पता है इसको कहते हैं बीइंग इमोशनल, और कहते हैं ना कि बप्पा को विदा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। वो जाते हैं फिर से वापस आने के लिए, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि गणपति बप्पा जब जाएंगे तो जाते जाते आपके सारे दुख को हर ले और जितने आपके आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं वो सारा कुछ हर ले और आपकी ज़िंदगी में बस खुशी ही खुशी बाकी रहे। तो चलिए 7:07 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग, 14 सितंबर। कल बहुत सारे लोग निकल पड़ेंगे रास्ते पर गणपति का विसर्जन करने के लिए, और रात भर अभी लोग गणपति बप्पा के जागरी करेंगे और भजन करेंगे और उनको बहुत ही प्यार से स्मरण करेंगे। तो ऐसे में हम आपके साथ हैं। सो एक बार फिर से हम बहुत ही प्यार से कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम शो को जारी रखेंगे टिल 9 PM, जहां पर दिव्या का साथ है। एंड साथ में आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस जरूर हम तक पहुंचाइएगा ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
3: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: 2 रेडियो मस्ती
1: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

7:25 हो चुके हैं, क्या बात है। तुमसे थोड़ा सा मैं दूर हूँ, थोड़ा सा करीब हूँ। कभी ऐसा भी होता है ना कि दूरियों से प्यार बढ़ जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि दूरियां भी हैं ज़रूरी, क्योंकि इससे आप जाकर एहसास करते हैं कि बस प्यार कितना गहरा है। और इस गहरे प्यार को और भी गहरा करने के लिए बस आपको दूरियों को मिटाना है और साथ में प्यार को बरकरार रखना है। ऑफ कोर्स यू कैन मेंटेन द लव, द मैजिक ऑफ लव, बाय गिविंग सो मच ऑफ एफर्ट। और साथ में इस एफर्ट में एक मैसेज तो ज़रूर बनता ही बनता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि आप वक्त निकाल कर किन किन लोगों को याद कर रही हैं। सो डोंट फॉरगेट, दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज, जहां पर हम साथ हैं टिल 9 PM। सो कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। टोल दोज जो अभी शायद पूजा पाठ में लगे हुए हैं, गणपति चल रहा है आपके घर में, या फिर आप कहीं पे इनवाइटेड हैं और अभी आप तैयार हो रहे होंगे वहाँ पर जाने के लिए, सो आपको बस हमारा साथ बिल्कुल है टिल 9 PM और नॉनस्टॉप आप लोगों के लिए 24/7 आपके लिए गाने चलते ही रहते हैं। सो चलिए एक बार फिर से कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: FM2 रेडियो मस्ती फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: FM2
2: रेडियो मस्ती।

0: थैंक यू सो मच आपके इतने सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए. एंड चलिए यहाँ पर किसने हमें याद किया है. हाय दिव्या, लवली सिलेक्शन, थैंक यू सो मच. और नाम तो शायद आपका रेशमा है, तो रेशमा जी दिल से आपको शुक्रिया. एंड साथ में आप ने यहाँ पे हमें कहा है, हाय दीदी दिव्या, प्रीति फ्रॉम अमोगी, नेक्स्ट गाना आपके लिए और मेरे परिवार के लिए, गुल्ली माता आपको सुना है ये गाना. तो चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो ये गाना ज़रूर आपके लिए हम चलाएंगे. एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं एंड जो शायद आपको भी जानते होंगे, सो साथ देने के लिए ऐसे ही आपको हम दिल से शुक्रिया कहेंगे. और चलिए प्रीति जी, हम सोच रहे थे कि आपने इतने प्यार से ये गाने की रिक्वेस्ट की तो आपको निराश नहीं करेंगे, तो ये चल पड़ा नेक्स्ट आपका गाना.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

क्या बात है दोस्तों, हमको दीवाना कर गए और आपका प्यार किसको दीवाना कर रहा है जरूर हमें बताइएगा ऑन 5499 1294 एट बटकर 7 मिनट हो चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग जहाँ पर दिव्या का साथ है। हाँ, मुझे पता है कि शायद आवाज़ से आप अभी के लिए पहचान नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, क्लाइमेट के चलते जुकाम या फिर सर्दी हो ही जाती है, लेकिन अपना प्रिकॉशन

0: ज़रूर आपको लेते ही रहना है, और कभी कभी जितना प्रिकॉशन आप लेते रहते हैं उतना ही आप बीमार पड़ भी जाते हैं, बट कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपनी तरफ से पूरा पूरा अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे लोग हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो चलिए, यहाँ पर हमारा और आपका साथ है टिल 9 PM। ऐसे ही आप अपने मैसेजेस, आपका प्यार हम तक पहुँचाते रहे ऑन 5499-1294 टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ। आपको मौको and if you're driving, drive safely and drive carefully.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: हल्कों में तुम मेरी नींदों में तुम

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: हाय हम तो कहेंगे आप करिए इतना प्यार और इतना सारा प्यार का हकदार तो सब लोग ही होते हैं. सो ट्राई टू कीप इंक्रीजिंग द लव डोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 8:23 हो चुके हैं. एंड चलिए ज्योति जी आप शातु बिना से नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखा मतलब फैमिली एंड गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच ज्योति जी आपको भी. एंड चलिए यहाँ पर शशि जी थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. सबसे पहला सवाल तो आपको हम आपका जवाब हम दे देते हैं. आपने पूछा आप परी हैं या दिव्या हैं तो आपको हम बता देते हैं कि दिव्या साथ दे रही है. थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए. एंड आप का ये कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर द फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड चलिए नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके नाम एंड गणपति बापा मोरिया एंड आपको बहुत बहुत सारा प्यार. थैंक यू सो मच शशि जी हमारा साथ देने के लिए. एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ आवाज़ सुनकर आप भी थोड़े कन्फ्यूज हो गए हैं तो आपको हम बता देते हैं कि दिव्या का साथ है टिल 9 PM ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. कीप सेंडिंग यू मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: टू रेडियो मस्ती। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
1: RM2 Radio

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
3: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
2: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
3: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: FM2 रेडियो मस्ती। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Alright, it's already 8:53 and chaliye is gaane ke saath it's time for Divya to say goodbye to all of you and jaate jaate hamari beautiful si Radha ji ke liye ye gaana ho jaye. और आप ऑल द वे फ्रॉम कनाडा और आपने कहा है टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच राधा जी, इट मीन्स अ लॉट. एंड आप कहते हैं प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट ब्यूटीफुल गाना फॉर माय फैमिली इन कनाडा मॉरिशस एंड आरएम टू लिसनर्स के लिए. आप पास गणेश चतुर्थी टू ऑल, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ. और बिल्कुल सब लोग बप्पा की राह देखेंगे और कल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल डे क्योंकि उनको विदा करते करते आँख में आंसू आ ही जाते हैं. तो चलिए टू ऑल दोज जिन्होंने व्रत रखा है आपको बोंकुआज, और जो लोग रात भर जागने वाले हैं आपको भी बोंकुआज है. तो चलिए ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा RM2 रेडियो मस्ती में. एंड तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच. तब तक के लिए बस आपको शुभरात्रि एंड बाय बाय.

चलिए हमने बबाई तो कह दिया, लेकिन जाते जाते यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम अपने प्यारे पापा सुनील के लिए डेडिकेट करेंगे, जो इस वक्त कनेक्टेड हैं त्रियोले से. एंड दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर रघुबीर फैमिली. एंड बहुत ही प्यार से अपनी दो बेटियों को याद कर रही है, और साथ में उन्होंने कहा कि प्लीज़ दिव्या का भी नाम शामिल कर दो. हमेशा हम कहते हैं ना कि आपके मैसेजेस आते हैं तो आप तो हमारे फादर फिगर जैसे हैं. एंड थैंक यू सो मच पापा सुनील, साथ देने के लिए.

0: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
1: RM2 Radio Musti

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

गणपति पापा मोरिया। सभी हमारे जितने लिस्टर्स हैं उन सभी को कहेंगे गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि विघ्नहर्ता आपके जीवन से सारे विघ्न दूर कर दे और आपके जीवन में खुशियां भर दे। और इसी के साथ शुरू होता है हमारे सफर लेट नाइट ग्रूव्स का, जिसमें मैं विदिता आप सबों का

वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार, कैसे हैं हमारे प्यारे लिसनर्स। जी हाँ, रेडियो मस्ती के जितने भी हमारे दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबों का हम स्वागत करते हैं। चलिए, वेदिता का साथ यहाँ पर देने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो खूबसूरत रोमांटिक गीतों का ये सफर ले आए हैं आपके लिए।

हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं वेदिता और आप साथ दे रहे हैं हमारा लेट नाइट ग्रूव। जी हाँ, ग्रूव करेंगे लेकिन रोमांटिक गीतों के साथ ही करेंगे। तो जहां से भी साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हियर वी गो। वी गोना कंटिन्यू विद सम रियली ग्रेट रोमांटिक गाने आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपनी रेडियो मस्ती पर।

जी दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर प्यार हमें सिखाता है कि प्यार वो नहीं जो इंसान सिर्फ पाना जानता है। कोई हमसे प्यार करे तो वो हमसे प्यार करता है। अगर हम किसी को प्यार करें तो हमें भी तो प्यार देना चाहिए। लेकिन हर एक प्यार जो होता है ना, वो दो तरफा नहीं होता, कभी कभी प्यार एक तरफा भी होता है। तो अगर ऐसे प्यार में आप खोए हो, चलिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसा जो आपको सच में प्यार करे

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

दोस्तों हम मना रहे हैं गणेश चतुर्थी। आप देखते हैं ना कि लोग कितने उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं, कितने प्यार से मनाते हैं। बप्पा को अपने घर ले आते हैं, उसकी सेवा करते हैं, जागरण करते हैं, डांस करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि बप्पा को हम बहुत प्रेम करते हैं और बप्पा अगर थोड़ा सा प्रेम हमें दे देना तो हमारा जीवन सफल हो जाए। चले बोले गणपति बप्पा मोरया।

दूरियां तो होती है बहुत होती हैं दूरियां ये पहले पहले प्यार में ना दूरियां सही नहीं जाती लेकिन वही प्यार शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है एक दूसरे को ही अलग कर देता है जी बिल्कुल प्यार करो तो उससे करो ना जो कि आपको जीवन भर उस प्यार के रिश्ते में बांध के रखे कुछ लोग शादी के बाद ना भूल जाते हैं कि प्यार जो होता है शादी के बाद ख़त्म नहीं होता बल्कि आपके प्यार को एक नया मोड़ देता है आपको एक फैमिली देता है और ये जो फैमिली है अगर इसी प्यार के साथ आपको बांधे हुए चले ना तो लाइफ में आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ना

बहुत मुश्किल से मिलता है सच्चा प्यार, अगर आपके पास है ना तो उसको ठुकराइएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि भाई प्यार से क्या होगा, लेकिन असली बात तो यही है कि प्यार है तभी तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। ये प्यार ही तो है जो हमें आप तक खींच लाता है, और हम ले आते हैं आपके लिए लेट नाइट रूम्स।

बस्ती पर मैं विदिता आपका साथ दे रही हूँ, लेकर आई हूँ लेट नाइट ग्रूव्स। और जो लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं प्लीज बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, ओके। और आजकल आप देख रहे हैं लोग कुछ ज्यादा ही अच्छुम अच्छुम कर रहे हैं। वो क्या है ना कि जब गर्मी के बाद सर्दी आ रही थी तो यही हालत थी, और अब धीरे धीरे करके जब सर्दी खत्म हो रही है और गर्मी शुरू होने वाली है तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। इसीलिए प्लीज टेक योर प्रिकॉशंस एंड बाकी तो एंटरटेनमेंट हम कर ही रहे हैं आपका।

जी दोस्तों, एंटरटेनमेंट की बात करें तो रोमांटिक गाने लेकर आई हूँ मैं वेदिता, एंड आई जस्ट होप यू आर लविंग द सॉन्ग्स। मेरी यही टेंशन है कि आपको हमारे गाने पसंद तो आ रहे हैं ना। अगर गाने पसंद आ रहे हैं तो ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा जो गाना है इसे तो आप डबल पसंद करने वाले हैं। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ना, इसीलिए बोला मैंने। तो चलिए एंजॉय करते हैं।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

तो प्रिय श्रोताओं, आप सबों का हम स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम आपको गणपति बप्पा जो हैं वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं और मैं आशा करती हूँ विघ्नहर्ता आपके जीवन से सारे विघ्न दूर करें, आपके जीवन में सुख और शांति प्रदान करें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।

मौसम इतना लवली है कि मैं क्या बताऊं। वैसे कभी कभी ये भी होता है कि बाहर का नज़ारा कितना भी खूबसूरत हो, इंसान अगर अंदर से खुश नहीं होता ना तो उसको कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इंसान अगर अंदर से खुश नहीं ना तो उसको बाहर कभी भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान वही खूबसूरत होता है जो सिर्फ मेकअप से और अच्छे कपड़ों से सुंदर ना लगे, जिसका मन खूबसूरत हो, जिसकी बोली अच्छी हो, जो प्यार करना जाने। हम भी जानते हैं, इसीलिए लेकर आते हैं लेट नाइट ग्रूव्स।

0: सो मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए अब तक आपने कितने सारे गीतों को पसंद किया?
1: सारे
0: सारे गाने अच्छे हैं। अरे वाह, आपका फेवरेट भी था इसमें। आई एम सो हैप्पी। पता है, बड़ी मेहनत से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद के कुछ गाने शामिल कर लें। अब हमें थोड़े ना पता है कि किसको क्या पसंद है, इसीलिए अपने पसंद के ही गाने लेकर आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया। गीतों का सफर जारी है, ये है आपका नेट।

डॉक्टर पहले बता रही थी ना लोग बीमार पड़ रहे हैं तो ऐसा करो अपने विटामिन सी लिया करो और साथ ही साथ आदत डाल लो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाने की, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं सर्दी के मौसम में इतना गर्म पानी से नहाते जैसे बाहर जाते हैं फिर अचुम करने लगते हैं एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइस टू फॉल सिक एंड ऑल. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे. अभी के लिए क्या करूँ, शायद ये गाना आपको अच्छी लगे. इंजॉय.

चलो दोस्तों जाने का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी? अरे जल्दी आपके लिए मुझे जाना पड़ेगा। अभी नहीं गई तो वापस कब आऊंगी? वापस भी तो आना है मुझे। तो चलिए मैं फिर वापस आऊंगी और जब आऊंगी तो प्यार से आऊंगी, आपसे मिलने आऊंगी और खूबसूरत गीतों के साथ आपको एंटरटेन करने भी आऊंगी। चलिए खूबसूरत गीतों के इस सफर में अगला गाना आ

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि।

दीखावास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: दो ना।
1: भरो इंतजार।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.